ब्यूटीफुल सॉन्ग है, जब लड़की सीटी बजाए क्या बात है। महान संगीतकार द ग्रेट बाप्पी लहरी के साज पर इन दी वर्क का जो अल्फासे था, और क्या बात, इतनी खूबी से किशोरदा और एस जानकी ने आप सभी को सुनाया। अगला बयान फ्रॉम द सेम मूवी धर्म अधिकारी नितिन सेशन तख्त, और इस बार आप सुनेंगे क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में, साथ दे रहा है ग्रेट सिंगर फ्रॉम द 80s द ग्रेट शबीर कुमार जी, एक तो कम जिंदगानी।

गाने अब प्यार में जिंदगी गुजार दूं। ब्यूटीफुल सॉन्ग फ्रॉम द मूवी धर्म अधिकारी, बप्पी लहरी के साज पर सुनाया आप सभी को क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी और मशहूर गायक फ्रॉम द 80s शबीर कुमार। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं यारो, और देखा जाए The song's name, रूप देखो रंग देखो, एक बार फिर फ्रॉम द सेम मूवी धर्म अधिकारी, और वही हसीन जोड़ी सिंगिंग कपल अशा जी और शबीर कुमार के आवाजों में, बप्पी लहरी के साज, इंदिवर के अल्फाज।

आप सभी के खिदमत में पेश किया गया एड फिल्म धर्म अधिकारी बप्पी लहरी के साज और संगीत पर मिशन दृक फाउचमा जैसे किशोर दा के मधुर आवाज और आशा भोसले जी के आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। पत्थर के इंसान फ्रॉम द सेम मूवी आप सुनेंगे धर्म अधिकारी से बप्पी लहरी के साज पर और मशहूर गायक फ्रॉम द 80s मोहम्मद अजीज और साथ दे रहे हैं क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी के ब्यूटीफुल दोनों आवाज़ों में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे कंपोज बाय बप्पी लहरी।

What a great song from the movie Dharam Adhikari, O Patthar Ke Insaan. Mashhoor gayak from the 80s, Mohammed Aziz, saath de rahi thi Queen of Rock and Roll, Asha Bhosle ji, Pappi Lahri ke saanch par. तो दोस्तों वक्त हो चुका है कुछ शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर्स के चाहने वालों के लिए। और फरमाए अर्ज किया है भाई भूपेंद्र जी कुछ ताजे ताजे शेर्स भेजे हैं दोस्ती के बारे में। कहा है कि आपकी दोस्ती पे नाज है हमें, आपकी दोस्ती पे नाज है हमें, कल था जितना भरोसा उतना आज है हमें। दोस्त वो नहीं जो खुशी में साथ दे, दोस्त वो नहीं जो खुशी में साथ दे, दोस्त वही जो हर पल अपनेपन का एहसास दे। क्या बात है। फूलों को महकना सिखाने चले, फूलों को महकना सिखाने चले आप, इन हवाओं को रुख बताने चले आप, हम बहाने ढूंढते हैं दोस्तों पर मर मिटने का यारो, हम तो बहाने ढूंढते हैं दोस्तों पर मर मिटने का, दोस्त है कि हमें दोस्ती सिखाने चले। खुशियों पर फिजाओं का पहरा था, खुशियों पर फिजाओं का पहरा था, ना जाने किस उम्मीद पे दिल ठहरा था। तेरी आंखों से झलकती दर्द की कसम, तेरी आंखों से झलकते दर्द की कसम, ये दोस्ती का रिश्ता प्यार से गहरा था। मेरी दोस्ती की कीमत क्या आजमाइश कर सकोगे, मेरी दोस्ती की कीमत क्या आजमाइश कर सकोगे, जान से ज्यादा क्या फरमाइश कर सकोगे। मेरी दोस्ती है समंदर की पानी की तरह, मेरी दोस्ती है समंदर की पानी की तरह, क्या कभी उस पानी की पैमाइश यानि अंत कर सकोगे, क्या आप इस दोस्ती को कभी खत्म कर सकोगे। नामुमकिन है, नामुमकिन है। दोस्तों के बिना जिंदगी फजूल है, सही बात है यारो, दोस्तों के बिना जिंदगी फजूल है, पर दोस्ती के भी अपने कुछ उजूल है। कहते हैं दोस्ती में भी तकलीफ मिलती है, पर आप हो दोस्त तो सब कुछ कबूल है। अपनी तकलीफ में मुझे उम्मीद समझना, अपनी तकलीफ में मुझे उम्मीद समझना, कोई गम आए तो अपने नज़दीक समझना, दे सकूं हंसी उस आंसू के बदले, दे सकूं हंसी उस आंसू के बदले, तो हजारों के बीच मुझे सबसे करीब समझना। क्या किस्मत से मिले हो मुझे यूं छोड़ के ना जाना, किस्मत से मिले हो मुझे तुम यूं छोड़ के ना जाना, कोई अपना सा लगा है देखा सारा जमाना, यूं ही चलता रहेगा खुशी और गम, यूं ही तो चलता रहेगा खुशी और गम का आना जाना, बस हमारे साथ रहे तुम्हारा यार आना। तो था कुछ दोस्ती का शेर से जो मैंने आप सभी को सुनाया, या उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा। अगला बयान फ्रॉम द मूवी धर्म अधिकारी, और साथ ही साथ आखिरी बयान है फिल्म धर्म अधिकारी का, और सुनने को जा रहे हैं आप सभी को एक बार फिर महान गाने वाली क्वीन ऑफ रॉक एंड रोल आशा भोसले जी।

0: से धुन दबाकर भाग निकले।
1: भागे नहीं, हार गए। हारे हुए सिपाहियों पर गोरा अफसर बरस पड़ा और कहा, सामने से नहीं तो पीठ में छुरी मारो। जीत की खुशी में सोए हुए गांव पर

फ्रॉम द मूवी धर्म अधिकारी बप्पी लहरी के साँझ पर ये अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना अश्य भोसले जी के ब्यूटीफुल आवाज में साथियों के साथ। हमारे प्रिय श्रोताओं, सभी गाने फिल्म धर्म अधिकारी का जो रिलीज किया गया था नेगेटिव सेशन तक में आप सुने। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक फिल्म जो ऑल्सो रिलीज किया गया था नेगेटिव सेशन तक में, फिल्म कर्मा। और इस फिल्म में दिलीप साहब ने काम किया है बहुत ही मशहूर अभिनेत्री, और अपने जवानी में क्या खूबसूरत थी, मिस इंडिया भी वो थी यार फैफ्टर द ग्रेट नूतन जी के साथ। जैकी श्रॉफ भी इस फिल्म में काम किया है, मलकाय हुस्न श्रीदेवी जी, द ग्रेट एक्टर अनिल कपूर जी और ब्यूटीफुल पूनम धीलन जी, माधुरी दीक्षित, अनुपम खेर और नसीरुद्दीन शाह। जबरदस्त कास्ट है इस फिल्म का। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ पर आप सुनेंगे आनंद बख्शी का लिखा हुआ ये अति सुंदर बयान देशभक्ति सॉन्ग है और सुना को जा रही है आप सभी को मशहूर गाने वाली फ्रॉम द 80s 90s द ग्रेट कविता कृष्णमूर्ति जी। साथ दे रहा है महान गायक फ्रॉम द 80s द ग्रेट मोहम्मद अजीज जी, ए वतन तेरे लिए।

0: मेरा कर्म है तू, ब्यूटीफुल सॉन्ग है, सुनाया आप सभी को पुराने जमाने 80s का तीन मशहूर गाने वाले फ्रॉम द 80s 90s, मोहम्मद अजीज सुरेश वाडकर और मनहर उदास लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर आप सभी को सुनाया। अल्फाज़े थे आनंद बख्शी जी का। हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चून है हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, आप नगमे सुन रहे हैं ऐ यार तख्त, और ये भी खास करके जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट दिलीप कुमार जी ने काम किए हैं। हम पहुंच चुके हैं फिल्म कर्मा जो रिलीज किया गया था नेक्स्ट सेशन तख्त, उसी फिल्म में से आप सॉन्ग्स सुन रहे हैं। अगला बयान ऐ सनम तेरे लिए, फिल्म कर्मा लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर अब सुनाने को जा रहे हैं। आप सभी को श्रोताओं को मालूम होना चाहिए कि दिलीप कुमार जी एक बहुत ही बेहतरीन गायक भी था, तो उन्हीं के मधुर आवाज में मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति के आवाजों में ये अति सुंदर बयान आप सुनेंगे।
1: बारंबार इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। अरे पूछे मेरी बीवी, डू यू लव मी, डू यू लव मी,
2: तो क्या कहा आपने।
1: अरे बरसों से तो कहता आया आई लव यू, आई लव यू, हर दिन हर पल यही कहूं मैं आई लव यू, सुबह सवेरे काम पे जाऊं आई लव यू,

Hey, Sanam Tere Die, de film Karma 1986. Dilip Kumar, Mohammed Aziz, Aurk, Vita Krishna, Murtike Awazume, Tisundar Vyana, Absatani, Suna, composed by maestros Lakshmi Kant Pyare Lal. हमारे प्रिय श्रोताओं, वक्त हो चुका है विज्ञापन और देश विदेश का समाचार के। तो भी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद में कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है, आप ही का आवाज है, जनता का आवाज है। ब्रेक के बाद मिलता हूँ यारो, कहीं

एफए प्लस रेडियो सुनाते हैं साफ और स्पष्ट आवाज डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग की राज आप भी ले द प्लस रेडियो और दूर दूर तक देश के कोने कोने में सुने फाहोंग हिंदुस्तानी रेडियो की वाणी डिजिटल ऑडियो ब्रॉडकास्टिंग आकाशवाणी।

स्टनी रेडियो का कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। अब चुन है द प्लस रेडियो पर एनाटिक उक्त बुलेस्टर विया इंटरनेट के लहरों द्वारा फाउन FM.NL पर ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं। आप तमाम श्रोताओं को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में हमारे फुल टीम की तरफ से। टॉम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं आप सभी को फिर से एक बार स्वागतम कार्यक्रम में। अनतुलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स एंड बदंत फॉर एट लाइस्टरन एक बार फिर से स्वागतम आप सभी को कार्यक्रम में। और फुल टीम की तरफ से आप सभी को नतुलक एल्फी लाइस्टर प्लेजियर पेश किया जा रहा है। तो जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाई से हो, जरूरी खबरें, या तो आप एक व्यापार हो तो अपने व्यापारी के बारे में, या तो आप एक इवेंट और खरीदार हो और गमन हो और गवुमन, तो जो आप ऑर्गेनाइज करते हैं, या तो अपने व्यापारी के बारे में जरूर कमर्शियल बनवा कर और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ब्रॉडकास्ट ऐलान कराना यारो, तो देखना कैसे चमकार पे चमकार हो जाएगा। ये बात मैं आप श्रोताओं से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि तमाम लोग फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम को सुनते रहते हैं। क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश हो ना, अब मात पर हम लोग बनाकर और जितने बार चाहे गे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे, और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूं कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यारो। आप आसमां कर तो देख, सभी जानकारी नया नंबर दिया गया है 9723568 पर आप तार करें, या तो आप 9723568 पर। जो भी रेडियो का काम हो, डेंक ऑन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। बेंट यू नो खेल फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, तो गुजारिश बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारा फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी बेल तेरेंस कांतोर यूरो ऑफ 0702135698 ऑफ ऑप 0703562247। तो आप भी जल्द से जल्द फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रेक्लाम बनाते रहना, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के बारे में बातें शाते भी करते रहना। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, और हमारे फुल टीम की तरफ से इसके लिए आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। एक ही दम लेकर चलते हैं आप सभी को प्रोग्राम के ओर। और जैसे मैं आप सभी से कह चुका था, बीते हुए सप्ते आप सुने फिल्म कोहिनूर जो रिलीज किया गया था 1960 के नगमे, और वो सभी मैं आप सभी को सुना चुका था। अब लेकर चलते हैं आप सभी को एक ब्लॉकबस्टर मूवी जो रिलीज किया गया था 1960 ऑल्सो, मुगले आजम। दिलीप कुमार और मलकाय हुस्न मधुबाला जी का ये सुपरहिट ब्लॉकबस्टर मूवी में से आप नगमे सुनेंगे। संगीतकार है महान संगीतकार द ग्रेट ग्रेट ग्रेट नौशाद अली जी, और नगमे इस गाने के जितने हैं सभी लिखे हैं महान लेखक शाकिल बादायूनी। तो फिल्म मुगले आजम में से नगमे आप सुनेंगे। एक नगमा है जो सबसे ज्यादा मशहूर हुआ था उस मूवी में, और सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी नौशाद अली के साथ पर ग्रेट सॉन्ग प्यार किया तो डरना क्या, एवरग्रीन सॉन्ग स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

आए मैस्ट्रो नौशादली, प्यार किया तो डरना क्या। आई फिल्म मुगले आजम 1960, जबरदस्त मूवी उस जमाने का साबित हुआ था ये अति सुंदर मूवी। और उसी फिल्म में से नगमे आप सुन रहे हैं लता जी के मधुर आवाज में कोरस के साथ। अगला बयान फ्रॉम द सेम मूवी मुगले आजम, एक बार फिर भारत रत्न लता जी के मधुर आवाज में, जब रात है ऐसी मतवाली। शाकिल बादायुनी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान, कॉम्पोज बाय नौशाद जी।

जब रात है ऐसी मतवाली, ब्यूटीफुल सॉन्ग भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी की आवाज में, एड फिल्म मुगले आजम कंपोज बाय नौशाद अली। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं यारो, एक और एड सेम मूवी मुगले आजम और फिर एक बार क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा इस मूवी में लता जी ने गाने गाई है। तो मिलके सुनते हैं खुदा नेहबान हो, कंपोज बाय नौशाद जी।

Beautiful song, masterpiece of composing by maestro Naushad Ali from the movie Mugliazem, 1960. Lettergy K, beautiful awaits me. तुम्हारे प्रिय प्रिय श्रोताओं को शेर शायरी हो जाए ना हमारे शेर के चाहने वालों के लिए। अर्ज किया है भाई भूपेंद्र जी डायरेक्ट फ्रॉम मुंबई, कुछ ताजे ताजे लिखकर भेजे हैं दोस्ती के बारे में कुछ शेर शायरी। जिन्हें चाहो दिल से उन्हें दिल के पास रखना, जिन्हें चाहो दिल से उन्हें दिल के पास रखना, हर पल हर मोड़ पर इन्हें खास रखना। नाजुक होते ये दोस्ती के रिश्ते, नाजुक होते हैं ये दोस्ती के रिश्ते, कभी टूट ना जाए इसलिए इन पे विश्वास रखना। रिश्तों की डोरी कमजोर होती है, आंखों की बातें दिल की चोर होती है। खुदा ने जब भी पूछा दोस्ती का मतलब, खुदा ने जब भी पूछा दोस्ती का मतलब, हमारी उंगली आपकी ओर होती है। हैप्पी हैप्पी फ्रेंडशिप। तेरे साथ गुजरा लम्हा जब भी याद आएगा, इस जन्म के बाद भी तेरा ख्याल आएगा। अगर बख्शी बार बार जिंदगी ऊपर वाले ने मुझे, अगर बख्शी बार बार जिंदगी ऊपर वाले ने मुझे, तुझसे दोस्ती करने को हरदम जी चाहेगा। क्या बात है, वाह। पल भर में टूट जाए वो कसम नहीं, अपने फ्रेंड को भूल जाए वो हम नहीं, तुम हमें भूल जाओ इस बात में भी दम नहीं, क्योंकि तुम हमें भूल जाओ इतने बुरे हम तो नहीं। हसरतों की निगाहों पर सख्त पहरा है, हसरतों की निगाहों पर सख्त पहरा है, ना जाने किस उम्मीद पर दिल ठहरा है। तेरी चाहतों की कसम ऐ दोस्त, तेरी चाहतों की कसम ऐ दोस्त, अपनी दोस्ती का रिश्ता तो प्यार से भी बड़ा होता है। इन अंधेरों के लिए कुछ आफताब मांगे हैं, दुआ में हमने फ्रेंड्स कुछ खास मांगे हैं, जब भी मांगा कुछ रब से तो आपके लिए खुशियों का पल मांगे हैं। तो ये था कुछ शेर्स हमारे शेर्स की चाहने वालों के लिए। आगे के कार्यक्रम में कोशिश करूंगा कुछ और सुनाने के लिए। अगला बयान एक बार फिर लता जी के मधुर आवाज में, जैसे मैं आप सभी से कह चुका था, इस मूवी में मुगले आसम में सबसे ज्यादा गाने लता जी के आप सुनेंगे। मोहे पनघट पे, ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज बाय मैस्त्रो नौशाद अली, एंड सॉन्ग इज रिटन ऑफ कोर्स बाय शाकिल बारायूनी, द मास्टर पीस ऑफ कंपोजिंग। और क्या गला थी उस जमाने में लता जी के।

अन्य आप श्रोताओं की सेवा में पेश किया गया फ्रॉम द मूवी मुगले आजम, पहला था तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर, लता जी और शमशाद बेगम कोरस की आवाज में, और ये अति सुंदर बयान मोहिपन घट पे क्वीन ऑफ मेलोडी लता मंगेशकर जी के मधुर आवाज में, 1960 मुगले आजम कंपोज बाय मैस्ट्रो नौशाद अली। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है हमारे प्रिय प्रिय श्रोताओं, गीत और गजल होत इस गोद नामक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, साप्ताहिक कार्यक्रम आप श्रोताओं के सेवा में, खास करके फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से मोहब्बत की झूठी कहानी फ्रॉम द मूवी मुगले आजम, एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी नौशाद अली के साथ पर लता जी सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को ये अति सुंदर एवरग्रीन सॉन्ग।

ब्यूटीफुल सॉन्ग है मोहब्बत के झूठी कहानी पे रोए एड फिल्म मुगले आजम 1960 शाकिल बारायूनी का लिखा हुआ है अति सुंदर बयान कंपोज बाय म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद अली और सुना दिया आप सभी को भारत रत्न लता मंगेशकर जी हमें काश तुमसे मोहब्बत फ्रॉम द मूवी मुगले आजम एक बार फिर भारत रत्न क्वीन ऑफ मेलोडी नौशाद अली के साज पर शाकिल बादायूनी का लिखा हुआ अति सुंदर बयान स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम

दर्द से भरा हुआ अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुना। एक फिल्म मुगले आजम 1980 नौशाद अली के साथ पर शाकिल बारहवीं के अल्फाजे लता जी के मधुर आवाज में। ऐ इश्क ये सब दुनिया वाले, एक बार फिर क्वीन ऑफ मेलोडी लता जी के मधुर आवाज में। एड फिल्म मुगले आजम कंपोज बाय नौशाद अली, अल्फाज है शाकिल का।

हमारे प्रिय श्रोताओं, अभी आप विज्ञापन सुनेंगे, देश विदेश का समाचार, उसके बाद मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। तो स्टे ट्यून ऑन, आप ही का तो आवाज है, जनता का आवाज है, फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज है। आप

मैं आपका सेवक गोपाल परदेसी बाबा। प्यारे प्यारे भाई बहनों, आपको बतलाने जा रहा हूँ लक्ष्मी के बारे में। आप लोग, हम लोग सभी लक्ष्मी जी के पीछे दौड़ लगा रहे हैं, हम भी लगा रहे हैं मित्रों। हम पीछे कब रहे हैं? हम तो आपसे 10 कदम आगे हैं मित्रों। लोग कहते हैं किसी तरह से भी पैसा आए, हम तो इस तरह के आदमी हैं। कभी लोग कहते हैं ना, तो केवल लक्ष्मी की साधना करने से मित्रों वो आएगी, जरूर जरूर आएगी, परंतु उलक वाहिनी लक्ष्मी आएगी। मित्रों ध्यान करना, महालक्ष्मी के 3 प्रकार के वाहन हैं। एक उल्लू पर आती है जिसको उलुक वाहनी कहते हैं, और एक गज पर आती है जिसको गज वाहनी कहते हैं मित्रों, और एक भगवान के गरुड़ पर आती है उसे गरुड़ वाहनी कहते हैं मित्रों। अब अकेली लक्ष्मी की यदि हम साधना करेंगे तो वो उलुक वाहनी के रूप में आएंगी मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, क्योंकि स्वतंत्र होकर आएगी। जब बिना नारायण के आएगी तो चंचला बन के आएगी और उल्लू की सवारी पर आएगी मित्रों। आजकल साधारण मंत्रियों के आगे पीछे अनेक गाड़ियां होती हैं, तो क्या लक्ष्मी महारानी के साथ में उसकी फौज नहीं चलेगी? बताइए ना, अवश्य चलेगी। उनके साथ एक सेना नायक रहते हैं, सेनाधिपति, और सेना के तो गिनती नहीं, पर एक तो है ही, एक सेना नायक होते हैं उसके। इस नगरी के भी एक दरवाजे हैं मित्रों, दरवाजों पर उनके पहरेदार खड़े हो जाते हैं। लक्ष्मी के आते ही उसको उसका वाहन होता है उल्लू। उल्लू कहता है कि माई पहला काम तो मुझे करने दो। माई कहती है हाँ, कर ले, जो करना है कर ले, खाना पीना जो है सो कर ले, कर ले मित्रों। वो उल्लू घर में आते ही मनुष्य की बुद्धि को उल्लू बना देता है, उल्लू बना देता है। आप विचार करें, उल्लू कैसे बन गए? हम तो मनुष्य हैं, परंतु जैसे ही लक्ष्मी का प्रवेश होता है तो घर की बहन, बहू, बेटियां मैम हो जाती है, सब मैम हो जाते हैं, मफराव हो जाते हैं। और फिर मफराव ही नहीं रहती, उनके बच्चे उनको मॉम कहना शुरू कर देते हैं। माताजी नहीं, अब मॉम मॉम हैं, जो कि विदेश में मॉम मृत शरीर को कहते हैं, मॉम मृत सर, मरे हुए आदमी को कहते हैं शरीर को। तो हमारी संस्कृति नष्ट होने लग जाती है मित्रों, और मनुष्य उल्लू बन जाता है। कैसे बन जाता है? यही कि बड़ा घर बड़ी है जो 21 दिन होटल से खाना खाए, नहीं तो घर है ही नहीं जब तक होटल से खाना ना आए मित्रों। जब तक वो 4-4 क्लबों का मेंबर नहीं बन जाता तब तक बड़ा घर मान्य नहीं होता। आज की संस्कृति में सज्जनों, बड़े साहेब बड़े घरों के क्या कहने, फला क्लब के मेंबर है, अनेक क्लब का मेंबर है, क्लबों में 2-2 घंटे
तीन तीन घंटे चार चार घंटे तो लगाते ही हैं ये सब। वे 9-10 बजे क्लबों में जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त उठने के समय में क्लब से आते हैं। जैसे उल्लू रात को जागता है और दिन में सोता है, ऐसे लोग हैं ये काफी पैसे वाले। उसी तरह से आज के हमारे धनवान लोग, पैसे वाले व्यक्ति जो अपने आप को सर्वोपरि सेठ कहते हैं, रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं। जबकि हमारे शास्त्र का मत है कि चक्रवर्ती महाराजा दशरथ भी 4 बजे जग जाया करते थे। मित्रों, राम के पिताजी 4 बजे सुबह जाग जाते थे। और आज के राजा यानी सेठ धनवान लोग रात भर क्लब में रहकर अपने समय को दुर्व्यसनों में लगाते हैं, पाप में लगा देते हैं काफी। मैं दुर्व्यसनों तो नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैंने क्लब देखा नहीं है। मित्रों, हो सकता है वहां रामायण के अखंड पाठ होते हैं, हो सकता है गुरु ग्रंथ साहेब के पाठ होते हो सकता है वहां माला भजन होता हो, और हो सकता है वहां परमात्मा की पूजा होती हो। मित्रों, ये तो मैं कैसे कह सकता हूं कि वहां क्या होता है, पर परमात्मा का पूजन तो यूं नहीं लगता कि वहां से निकलने के बाद उनके चेहरे पर खुशी नजर नहीं आती है। मित्रों, ऐसे मालूम पड़ते हैं कि बहुत पीटे गए हैं, वे बहुत पीटे गए हैं, पिटाई खाकर आए, ऐसे चेहरे नजर आते हैं इन लोगों का। क्लब में से निकल कर जब आते हैं तो भगवान के भजन में तो प्रसन्नता आती है मित्रों, और इन लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता नहीं है तो पीटे गए हैं। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, वो उल्लू बन गया और उल्लू के बाद फिर सेना कहने लगी कि हम पीछे क्यों रहे जी। बोली, हाँ, तुम भी अपना काम करो। उनकी सेना का नाम है बाजीकरण। मित्रों, जिस घर में केवल लक्ष्मी का आगमन होता है उसी का सत्कार है अकेले का। तो मेरे भाई बहनों, जुएबाजी, ताशबाजी, मुकदमेबाजी, शराबबाजी, कबूतरबाजी, रंडीबाजी, ये बाजियां उस घर के अंदर आ जाती है अकेली लक्ष्मी की वजह से। और जब ये बाजियां आ जाती है तो लक्ष्मी चली जाती है, पर नाम दे जाती है, बहुत सुंदर नाम दे जाती है उस आदमी को। क्या नाम धर जाती है? उल्लू का पट्टा। ये नाम दे जाती है उल्लू का पट्टा है। जब तक रही उल्लू बनाया और जाते समय उल्लू का पट्टा बना गई, तो लोग कहेंगे कि उल्लू के पट्टे पर संभली नहीं, बेवकूफ का पट्टा, उल्लू का पट्टा, गधे का बच्चा, कई नाम बन गई उसके। मित्रों, इसीलिए मेरे कहने का भाव ये है कि लक्ष्मी की हमें जरूरत तो है, क्योंकि लक्ष्मी के बिना एक सेकंड हम नहीं चल सकते। धर्म ग्रंथ जिसमें परम विद्वान मार्कंडेय जी महाराज ने कहा है कि हे महामाया श्रीदेवी, आप पापियों को पवित्र बना देने वाली हो और
निर्बुद्धियों को बुद्धि प्रदान करने वाली हो। कुल खानदान की लज्जा आपके ही हाथ में है, योग भी आपके ही हाथ में है। योगी भी योग तभी कर सकता है जब तुम्हारी कृपा हो। वो केवल पैसे से ही नहीं कृपा करती है मित्रों, कृपा भी करती है। योगियों के चित्त में जो चेतना पैदा करने वाली है वो श्रीदेवी ही है। तो धन से, आशीर्वाद से और आपके ज्ञान रूपी विद्या के द्वारा यदि आप कृपा न करें तो हमारा गुजारा एक मिनट नहीं हो पाता है सज्जनों। तो लक्ष्मी को जरूर घर में बुलाइए, मगर सिर्फ लक्ष्मी को नहीं, लक्ष्मी के पति को भी, लक्ष्मीपति नारायण को भी। तब वो गरुड़ पर आएंगे, फिर आपका बहुत उन्नति होगा मित्रों। आज मैंने लक्ष्मी के बारे में दिल ए ने पहला भाग बतलाया, आने वाला अमृतवाणी में आप दूसरी भाग यानी देल त्वी का श्रवण करेंगे मित्रों। परमात्मा प्यार की छत्र छाया में रहो, कोई भी विघ्न ठहर नहीं सकता। विश्वास करो परमात्मा में, और जिंदगी का दूसरा नाम समझौता है। हमेशा आप अपने जीवन में समझौता करते रहो मित्रों। बार बार हम ये कहते हैं भी कि प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं। तो प्यारे प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्यारे मित्रों, यहां तक था आज का अमृतवाणी उपदेश। मैं आपको जरूर फिर मिलूंगा अगर रहा जिंदगी।

मैं आपका सेवक गोपाल परदेसी बाबा। मित्रों, पिछले बार मैं आपको बतलाया था लक्ष्मी के बारे में, पहला भाग यानी देल ए। आज मैं आपको दूसरी भाग यानी देल त्वेई बतलाने जा रहा हूँ लक्ष्मी के बारे में। ध्यान करना, क्योंकि लक्ष्मी तो सभी चाहते हैं ना, आप भी, कौन नहीं, हम भी, सभी लोग दुनिया में बिना लक्ष्मी के जीवन ना ही चली। और काफी लोग लक्ष्मी पूजा करते हैं सिर्फ लक्ष्मी जी को, इसीलिए लक्ष्मी तो आएंगी, सब कुछ आपको देंगे भी, मगर जब वो अकेले आएगी तब तो उल्लू पर आएंगे और आपको फिर उल्लू बना के चले जाएंगे। मित्रों, धन दौलत आएंगे मगर उसी स्पीड से फिर खर्च भी हो जाएंगे। इसीलिए लक्ष्मी पूजा करो तो पति पत्नी दोनों लक्ष्मी नारायण के। मित्रों, तो मैं लक्ष्य बनाने की विधि बता रहा हूँ आपको। प्यारे प्यारे भाई बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, लक्ष्मी का लक्ष्य मत बनाओ, लक्ष्मी के पति का बनाओ, नारायण का बनाओ, लक्ष्मी पति का बनाओ, लक्ष्मी के पति का बनाओ। मित्रों, जहां लक्ष्मी का पति आएगा वहां लक्ष्मी भी अवश्य आएगी, या लक्ष्मी के साथ लक्ष्मी पति का भी स्मरण करो, दोनों को साथ में, और पति के साथ लक्ष्मी का भी स्मरण करो। पति के साथ जब लक्ष्मी आएगी तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आध्यात्मिक ज्ञान आएगा, तब संसार के एक से एक संत आशीर्वाद देने के लिए आपके घर पहुंचेंगे, तो आपको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मित्रों, ये संत लोग, ये बाबा लोग स्वयं ढूंढते हैं अपनों को, आ जाते हैं आपके दरवाजे पर, और ये निश्चित है कि वे स्वयं आपके पता को ढूंढ लेते हैं। लक्ष्मी के साथ नारायण भी चाहिए। जब लक्ष्मी नारायण का वास होगा तो हमारे घर के अंदर काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, मत्सरी दूर से झांक सकते हैं, दूर से झांकेंगे, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। मित्रों, आ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि वहां भगवान नारायण बैठे हुए हैं। मित्रों, ये लक्ष्य बनाना बता रहा हूं मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, कि मानव का लक्ष्य क्या है। लक्ष्य भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का हम बना लें और उसके नाम का स्मरण करते रहें। श्रीमन नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, इस तरह आप स्मरण करते रहें। जब हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा, मित्रों, जमीन उत्तम हो गई तो बीज तो बोना ही पड़ेगा ना। जब मन साफ हो जाए तो उसमें भगवान का बीज बोई दो। किसान से पूछो कि वो 6 महीने तक खेत को जोते, फिर उसमें खूब अच्छा खाद डाले और बीज नहीं डाले, तो क्या लेगा वो किसान? मित्रों, कुछ नहीं लेगा। क्यों भाई? वो तो उसमें 12 महीने से हल चला रहा है, फिर क्यों नहीं मिलेगा? क्या बेकार गई है मेहनत? मित्रों, बेकार गई है मेहनत कहते हैं। इसी तरह से दान पुण्य और यज्ञ आदि का फल यदि लेना हो तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, परमात्मा के नाम का स्मरण करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। शून्य शून्य, सब शून्य है।
शून्य है, नुल नुल नुल है, हैं? हम एक कागज पर पांच शून्य लगा दे, पांच नुल धर दे और छह शून्य लगा दे और दस्तखत करके बैंक मैनेजर के पास भेज दे, तो बैंक मैनेजर कहेगा कि अब महाराज की ये खोपड़िया दिमाग खराब होने लगा है, वृद्धावस्था आ गई इस ससुरा को है। पितरों इसी प्रकार तो उसी समय यदि हमारी खोपड़ी काम करे और तुरंत एक का अंक वो शून्य के आगे एन खींच दे, लगा दे, तो सीधे एक लाख हो गई है ना, एक लाख हो गई तो बैंक तुरंत नगद देगा। पर कब दिया? जब अंक लगा दे आप। इस तरह मित्रों, इस तरह जीवन के अंदर जब तक प्रभु का नाम रूपी अंक नहीं समाएगा, उसका नाम नहीं आएगा, तब तक प्राप्ति नहीं होगी, नहीं होगी। मित्रों, जहां तक आपके दान पुण्य योग यज्ञ का प्रश्न है, वे बेकार तो नहीं जाते ना, पर फलदायी भी नहीं रहते हैं। मित्रों, इसीलिए उस नाम की आवश्यकता है और उस नाम के लिए वेद भी, पुराण भी, इतिहास भी, संत भी, सत ग्रंथ भी नाम का प्रभाव गाते ही चले आ रहे हैं, गाते ही चले आ रहे हैं। मित्रों, गणेश जी महाराज ने नाम की महिमा को जाना, हृदय में धारण किया। आज भी उनकी सबसे पहले पूजा होती है, पूजा होती है उस पावन नाम का। हनुमान महाराज ने स्मरण किया तो राम जी उनके हृदय में विराजमान हो गए और उनकी मुट्ठी में रहने लग गए। शंकर ने जान लिया और प्रत्येक जीव के लिए काशी में मोक्ष देने लग गए। भाई बहनों, इस नाम की महिमा का वर्णन कहां तक किया जा सकता है। भगवान श्री राम भी उस नाम की महिमा गायन नहीं कर सकते। उन्होंने विचार किया कि तेरे अंदर ताकत है या नाम की ताकत है। रात को उठकर चल दिए, सूर्य तट के किनारे पर एक पत्थर उठाया और फेंक दिया, पत्थर डूब गया। हनुमान महाराज देख रहे थे, पूछा, ओ महाराज जी क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं हनुमान जी, कुछ नहीं, हम सोच रहे थे कि ये पत्थर तैरे, उनमें क्या हमारा बल भी कुछ था, यही देख रहे थे, पर हमारे हाथ का फेंका हुआ पत्थर तो डूब गया। मित्रों, तो कहने का भाव भगवान का ये था कि मेरे शरीर रूप धारण करने में ताकत नहीं, मेरे नाम में ताकत है, मेरे नाम में। मित्रों, मानवता आ गई तो फिर नाम की आवश्यकता बहुत जरूरी है, क्योंकि उस नाम के बिना उद्धार नहीं है, नाम के बिना गुजारा नहीं है। मित्रों, नाम के बिना सच्चा सहायक कोई नहीं हो सकता, सिर्फ परमात्मा। और नाम यहां भी है और वहां भी, दोनों जगह नाम महाराज रक्षा करता है मित्रों, परंतु अपने किए हुए दुष्कर्मों का फल तो मानव को भोगना ही पड़ता है, भोगना पड़ेगा। मित्रों, नाम का लेना बहुत जरूरी है और उसका स्मरण करना जरूरी है। जैसे आप प्यार में लीन हो तो दिन रात प्रेमी या यार के प्रेमिका का नाम लेते रहते हो, पति पत्नी अपने में लेते रहते हैं नाम, इसी तरह भगवान का नाम लेते रहो मित्रों। और
बहुत से आजकल के पढ़े लिखे कहते हैं कि ये नाम में क्या रखा है, क्या ढोंग है ये, ऐसे लोग कहते रहते हैं। मित्रों कहते हैं वे कि नाम वाम कोई नहीं, कुछ नहीं, आज के दिन में तो पैसा है, लक्ष्मी होना चाहिए, पैसा है तो सब कुछ है, सब कुछ है, भगवान को भी मना लेंगे पैसा से। मित्रों कैसा भी कोई बलवान ताकतवर हो और शस्त्र उसके पास में नहीं, तो मुझे बताओ कि क्या शत्रुओं को जीत लेगा? वो जीत लेगा नहीं। तो नाम कहती है कि मैं भजन करने का हथियार हूं, अगर तू मुझे बिछोड़ा देगा तो तेरा हथियार क्या रहेगा। तो अगर तू जीभा को हथियार मानता है तो ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता है, क्योंकि संत तुलसीदास भी उस नाम की महिमा का वर्णन किया है। प्रेमियों आप विचार कीजिए कि एक विभाग के लिए भगवान ने दो दो जवान बनाए, चलने का काम एक है, उसके लिए दो पैर जवान बनाए, करने का काम है उसके लिए दो हाथ बनाए, करने का विभाग एक है और अंग रक्षक दो, देखने का विभाग एक पर आंख दो दिए, सुनने का काम एक, कान दो बना दिए। मित्रों सूंघने का काम एक पर नथुने दो बना दिए, हर विभाग के दो दो, फेफड़े दो बना दिए, और जीभा से यही कहा कि तू परमात्मा का नाम ले, मधुर वचन बोल, पर जीभा कितनी बदमाश। विचार कीजिए, इसे बदमाश बोल रहा हूं, बदमाश बोल रहा हूं, संसार को नष्ट कर देती है, घर को नष्ट कर देती है। द्रौपदी ने यही तो कहा था कि अंधे के अंधे पैदा होते हैं, 18 अक्षौहिणी सेना खत्म हो गई इस जीभ से, इस जीभ के कारण। मित्रों तो भगवान ने विचार किया कि जीभा तो संसार को नष्ट कर देगी, क्या करें क्या करें, तो इसके नीचे रस्सा बांध दिया, जिसको तालवा कहते हैं, कि अब तो चुप रहेगी, चुप रहेगी, पर रस्से से बंधी हुई भी चुप नहीं रहती। तो 32 पहरेदार बना दिए, सख्त कठोर दांत, ताकि इसको बाहर न आने दो, और ज्यादा बकवास करे तो काट दे। फिर भी नहीं मानती ये जीभा, नहीं मानती है, फिर मजबूत गेट बना दिए, फाटक। आप अस्पतालों में देखते हैं जहां जगह जगह लिखा होता है, बोल मत चुप हो जा, बोल मत चुप हो जा, पर ये जीभा फिर भी नहीं मानती। इसलिए यदि जीभा पर भरोसा किया जाएगा तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों बच्चों, ये डुबा देगी तेरे को। यही जीभा स्वाद को बेस्वाद कह देती है, क्या भरोसा इसका, मीठा बढ़िया लाए, अरे ये तो बेस्वाद हो गया, भूख रही तहां तक तो स्वाद रहा। मित्रों भूख मिट गई, अब मजा नहीं आ रहा है। मित्रों क्या विश्वास, इसलिए नाम कहती है कि ए जीभा
जिस पर तू भरोसा कर रहा है ये काम नहीं करेगी, और हे मूर्ख मन, मैं उस प्रभु नाम सिमरन के लिए हथियार हूं। अगर कोई ये कह दे कि ये गलत है तो सचमुच वो मूर्ख होगा। मित्रों, इसीलिए अपनी जीभा पर आप अपने परमात्मा के नाम हमेशा लेते रहना, परमात्मा पर भरोसा करते रहो, क्योंकि भगवान से बड़ा भगवान का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है, राम से बड़ा राम का नाम है ना। तो इस पर आप अटल विश्वास करें। प्यारे प्यारे भाई बहनों, नाम जपो, यही हथियार है। तो अगर कोई कहे कि नाम में क्या रखा है, अरे नाम ही तो सबसे उत्तम है, भगवान को तुमने देखा नहीं, तो प्रभु के नाम में ही में भगवान को ढूंढो। कितने संत महर्षि लोग, कितने भक्त लोग नाम लेकर मोक्ष पा गए, भगवान को प्राप्त कर लिए, तो क्या आप नहीं कर पाओगे? मगर विश्वास तो है ही नहीं आप में ना, यही तो प्रॉब्लम है, विश्वास नहीं कर पा रहे हो। मित्रों, भगवान के इच्छाओं को पूर्ण करने से हमारी इच्छाएं स्वतः ही पूरी हो जाती हैं। मित्रों, इसमें कोई संदेह नहीं है, और सत्य बराबर धर्म नहीं, झूठ बराबर पाप। जिनके हृदय सत्य है तिनके हृदय प्रभु आप। आज मैंने लक्ष्मी के दूसरी भाग बतलाया आपको, लक्ष्मी के अलावा कुछ कुछ और मैंने आपको बतला दी, तो इसे जरूर आप अपने जीवन में उतारिए। लक्ष्मी जी की अकेले पूजा मत कीजिए, दोनों पति पत्नी को, लक्ष्मी और नारायण के, तभी आपका कल्याण है मित्रों। अन्यथा धन दौलत आएगा, सुखी नहीं हो पाएंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, तनाव में। दोनों को बुलाओ, बहुत सुखी हो जाओगे। प्रभु आप मुझे मिलो या ना मिलो, ये तो आपकी इच्छा है भगवान, मगर मुझे उनसे मिलवा दो जो आपको मिल चुके हैं। मिलेंगे फिर, अगर रहा जिंदगी।

गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर् देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

नमः माता पिता चरणम नमः विद्या प्रदायकम दीक्षम मंत्रम गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम।

के सेवा में मैं हूं आपका सेवक संजय। और आज के प्रोग्राम में मैं आपके साथ जुड़ गए हैं जो बीमार है भगवान से यही कामना रखते हैं कि ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, मस्त रखे और सभी दुखों से दूर रखे, यही प्रार्थना है मेरा। जिनका घर एक नया शिशु ने जन्म लिए है तो उनको बहुत बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें भी बहुत सा बधाई और शुभकामनाएं प्रस्तुत किया जाता है। और जहां अब तैयारी हो रहा है नौकरी की ओर जाने के लिए तो कहने के बाद ये हो जाता है कि आपका एक शुभ दिवस प्रस्तुत है। और ये मत भूलना, गांधी जी ने क्या सुनाए थे कि ये मत सोच कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि मैं अपने देश के लिए क्या कर सकता हूँ।

तैयारी कर रहे हैं स्कूल की ओर बढ़ने के लिए, तो ये कहना चाहूँगा कि माँ सरस्वती को भूलना नहीं। और ये आप अवश्य जानते हैं कि ईश्वर का दिया सब निःशुल्क है। ईश्वर का दिया सब निःशुल्क है, सबसे बड़ा संपत्ति बुद्धि, सबसे अच्छा हथियार धैर्य, और सबसे अच्छा सुरक्षा विश्वास, और सबसे बढ़िया दवा हंसी। तो आप हंसते भी रहना, क्योंकि कहा गया है सबसे बड़ा दुआ उसी को। सबसे अच्छा सुरक्षा, जिसे हम विश्वास से जानते हैं, और ये विश्वास कभी खोना नहीं, क्योंकि कहते हैं नीदरलैंड्स में ना कि फर्त्रावन राखी मार एन केर क्वाइट।

और कहा जाता है कि सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धि को, क्योंकि सबसे अच्छा हथियार भी कहलाया जाता है और यह हथियार धैर्य है। तो धैर्य से काम करना, जो हमारे देश में आए हैं सफर कर लिए, तो उनको भी हार्दिक से स्वागत किया जाता है।

कि 2025 में फ्रीडस पैलेस मधुरुदम वंदलतोख्त दोर द सेंट्रम जो स्केवनिंग कापीर द स्काइव्यू जो स्केवनिंग पे है Kijkduin over de Nationale Monumenten Oranje Hotel. Haagse Toren. Lange Voorhout. Het plein. Je sap jo 2025 mee kahlaya gaya hai de meest bezochte. Zienswaardigheden in de

सुंदर सा गीत सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए जो अपने नानी के अंतर्गत ये सुनाए। क्यों ना हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं।

ये सुंदर सा गीत जो बच्चे ने और जाकर के बच्चे के अंतर्गत रखा गया, सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। दोस्तों सुनने वालों, ये बात मत भूलना, हम रहते हैं हॉलैंड एक सुंदर देश में, पर अपना संस्कृति सभ्यता और भाषा को भूलना नहीं चाहिए। देखा जाए कि 150 साल से ज़्यादा हम सब भारत को छोड़ करके सूरीनाम गए और सूरीनाम से फिर हॉलैंड और भी कितने देशों में जा करके हम सब बसे हुए हैं, पर अभी तक हमारा सभ्यता संस्कृति और भाषा में बदलाव नहीं आए हैं। तो क्यों ना एक और सुंदर सा गीत के ओर बढ़ते हैं।

0: कहा टमाटर बड़े मजेदार। दोस्तों ये गाना हम चुन चुन के रखे हुए है ताकि आप इस पे ध्यान दें कि हम अपने बच्चों को क्या सिखाते हैं, क्या हम अपने बच्चों को हॉलैंड में रह करके भी अपना भाषा को सिखा सकेंगे। कहा जाए कि यूट्यूब पे जब हम थोड़ा खोज करें तो बच्चों के लिए सुंदर सुंदर संदेश के रूप में और रखा हुआ है। बबली जी आज आप भी इस कार्यक्रम में सहयोग दे रहे हैं और कुछ मैंने बच्चों के अंतर्गत में गाना चुन चुन के रखे हुए हैं, इसके बारे में आपके क्या ख्याल है?
1: सभी सुनने वालों को मेरी ओर से नमस्कार। बच्चों के गाने तो बहुत सारे हैं और जब हम बचपन में स्कूल जाना शुरू करते हैं बच्चे प्ले स्कूल हिंदी में कहते प्ले स्कूल शिशु निकेतन स्कूल, तो वहाँ पर सबसे पहले एक गाना और सिखाया जाता है।
0: तो गाना का बोल क्या है?
1: मछली जल की रानी है।
0: सबसे पहले ये गीत सिखाया जाता है बच्चों के?
1: हाँ जी।
0: तो हम क्यों ना वही गीत की ओर बढ़ते हैं।

0: गीत सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है ना?
1: ये गीत और है चंदा मामा दूर के।
0: तो हम क्यों ना ये गीत जो सूरीनाम में भी सुबह में रेडियो पे भी चलाया जाता था, क्यों ना हम लोग यहाँ भी चलाते हैं और चंदा मामा दूर की।

0: सभी बच्चे के लिए ये सुंदर सा गीत। बबली जी, ये गीत पे सुन करके आपको कुछ और संदेश रखना है?
1: हाँ जी, थोड़ा सा संदेश है। इन गीतों में हमें ये संदेश मिलता है कि जो अपने घर से दूर हैं, विदेशों में रहते हैं या अपने माँ बाप से दूर हैं, तो लिखने वाले ने धरती को माँ कह दिया और चंदा को मामा कह दिया, और जो बहनें दूर हैं वो चंदा को अपना भाई मानती हैं।
0: तो चंदा को अपना भाई मानती है। देखा जाए कि इस पे जब हमारे जब शादी होता है ना,
1: हाँ जी,
0: तो शादी होता है तो भाई जो अपना बहन जब माढ़ों में ब्याह होता है तो अपना बहन के, और जब जा कर के पंडित हाथ पे हाथ धरवा करके और उस पे जल छोड़वाते हैं ना भाई से,
1: हाँ जी,
0: तो भाई वहाँ कहते हैं अपने बहन से कि जा, तेरा शादी आज हो रहा है, मैं इस बात पे ध्यान रखूँगा कि अगर आपके आगे में जा कर के बच्चे होंगे तो हम आपके बच्चों पे ध्यान देंगे, और बच्चा भी हो जाता है पर समय रुकता नहीं ना,
1: हाँ जी,
0: तो समय रुकता नहीं और बच्चे का भी एक दिन शादी होता है, तो वही भाई जो जा करके इमली घोटाता है, और इमली घोटाता है जब, तो यहाँ पर ये संदेश रखते हैं भाई कि मैंने आपसे ये वादा रखा था कि कहीं जा करके आपके बच्चे होंगे तो उनको हम ध्यान रखेंगे, और आज मैं इमली घोटा करके और यहाँ से अपना जो कर्तव्य रखे यहाँ से पूर्ण हुआ। तो दोस्तों, इन बातों पे ध्यान देते हुए क्यों ना अभी मैं देख रहा हूँ आप भी कुछ और कहने वाले हैं।
1: हाँ जी जरूर, क्योंकि ना हर बात में मतलब छिपा है, उसका अर्थ है, तो इन बातों में भी एक गहरा अर्थ छिपा होता है जो हमें समझना चाहिए।
0: हाँ, कितना जो हम लोग अपना शायद परंपरा से आते हुए देखे हैं कि माढ़ो क्या है, मटकुरवा क्या है, मंडप क्या है। हम लोगों ने अभी मैं कार्यक्रम की शुरुआत में ये भी रखा था कि 150 साल से ज़्यादा हम लोगों ने भारत को छोड़ करके सूरीनाम गए, सूरीनाम से हॉलैंड और भी देशों में गए हैं, पर अपना सभ्यता, संस्कृति और भाषा को नहीं भूले हैं।
1: सही बात, और हर बात में एक गहराई छुपी है,
0: हर बात में एक गहराई छुपी है।
1: उस रीति रिवाज का मतलब क्या है, अर्थ क्या है,
0: सही,
1: जो हम लोगों को समझना चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों, सुनने वालों, हम लोग इस पे भी ध्यान दें, क्योंकि देखा जाए कि जो हमारे पुरखों है, जैसे कि एक शुरुआत में मैंने भी एक गीत को चलाए जिसमें ये मंत्र का संदेश रखा गया कि नानी तेरी मोर को मोरनी ले गए।
1: हाँ जी,
0: तो ये गीत का जो हम लोग बचपन से सुनते आए हैं, अभी तक नया फैशन उसे ना लिख पाए कोई,
1: नहीं नहीं।
0: अब देखा जाए ये चंदा मामा वाला भी अलग अलग लोग अपने आवाज में गाए हैं, म्यूजिक को बदल दिए, पर वो टेक्स्ट को नहीं बदल पाए।
1: नहीं नहीं नहीं। और देखो ना, जो शब्द बने हैं माँ और मामा कहते हैं तो दो माँ लग जाते हैं, क्यों माँ से भी बढ़कर मामा,
0: तो मामा लोग के भी कुछ कर्तव्य होते हैं कि अपना उस पे ध्यान दे कि भाई हमने अपना बहन के शादी में जब जा करके उनका कन्यादान हो रहा था तो जल को और छोड़े थे, और कुछ कर्तव्य आपने किए पर शायद इस बात को नहीं जानते थे कि आप क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों, हम एक और
1: वैसे ही मासी, मासी में भी माँ लगता है, तो वो भी माँ जैसी मासी,
0: मासी में भी माँ लगता है माँ जैसे, क्यों ना एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ते हैं बबली जी।
1: जरूर।

0: मेरा नाम करेगा रोशन जग में मेरा राज दुलारा। तो सुन वालो, ये सुंदर सा गीत हम सुन के हमें भी कुछ ख्याल आता है कि देखा जाए हम इसी में लगे हुए शायद होते हैं, पर समय हमें छोड़ता नहीं है और एक दिन वो समय आता है जहां हम फॉरसर्किंग सोइस में पहुंच जाते हैं, जहां पर सभी सब जो अपने जीवन में लगे रहे हम उसे छोड़ देते हैं और वहां बस यही होता है कि आज हमें जीना है, एक दिन और इसी प्रकार से पार होता है और हर एक दिन एक एक दिन के तरह आगे बढ़ते हैं, ना बबली जी।
1: तो संजय जी, आपके कहने का मतलब है कि वहाँ पर सब मिलजुल कर रहते हैं, कोई जात पात का झगड़ा नहीं है।
0: जैसे कि बचपन में हम सब क्लास में बैठते हैं ना।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: तो क्लास में सभी बच्चे और एक साथ में मिल करके गाते हैं,
1: जरूर।
0: और इसी तरह से हमारे अवस्था जब आ जाता है तो हम भी वहाँ पर बैठ करके और सभी मिलजुल करके कोई भेदभाव नहीं रखते हुए और साथ में रहते हैं।
1: लेकिन जहाँ हम जाते हैं सब जगह इकट्ठे काम करते हैं, चाहे काम करने जाएं, चाहे स्कूल में पढ़ने जाएं, सब लोग इकट्ठे मिलते हैं वहाँ पर।

0: फिल्म जिसमें ललिता पवार ने काम किया ना,
1: हाँ जी,
0: और ये सुंदर सा संदेश जो बच्चे अपने दादी को मना रहे हैं,
1: और जो बच्चे बने हैं उसमें एक डेजी ईरानी है, डेजी ईरानी और वो फराह खान जो डांस डायरेक्टर है उनकी मौसी है,
0: उनकी मौसी। तो ये गीत को आगे बढ़ाते हैं।

देखा जाए तो एक बॉलीवुड है जहाँ पर हर चीज़ के ऊपर गाने बने हैं, चाहे दादी हो, नानी हो, चंदा हो, मछली हो, जानवर कह लो, पक्षी कह लो, हर चीज़ के ऊपर गाने बनते हैं।

और तेरे दरबार में मैया खुशी तो जरूर मिलते हैं। और दोस्तों नवरात्रि का ये स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं और यानी हम अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, यानी कि नवरात्रि सॉन्ग की ओर। नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं।

मारमा और ये सब नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं और अगला भजन के ओर हम जाते हैं और वो एक गुजराती हैप्पी नवरात्रि जोहे है।

दुर्गा माता के और भवन जो है वो तो सदा प्यारे लगते हैं और खूब सजाए गए हैं। तो नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आप लोग को सुनाते हैं और जितने भक्त लोग हैं आप सबको हैप्पी हैप्पी नवरात्रि यहाँ से कहते हैं। अगला भजन की ओर हम चला जाए।

अम्बे माँ नवरात्रि स्पेशल सॉन्ग हम आपको सुनाते हैं हमारे दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला भजन की ओर और वो क्या है आप लोग खुद ही सुनिए। ये एक माता का भजन है भोर बई दिन और आप आइए अम्बे।

मेरे अम्बे और यानी कि स्पेशल नवरात्रि सॉन्ग आज हम आप लोग को सुनाते हैं। नवरात्रि के उपलक्ष्य पर हम सब का नौ दिन का और महा यानी कि नवरात्रि है, तो हम चलते हैं अगला भजन की ओर।

सुन रहे थे गुरिया चुराना मेरा जिया। धमाल फोर से हम पेश करते हैं इसी फिल्म से फुलौरी बिना चटनी, चलो ये भी हो जाए।

0: अभी आप सुन रहे थे फुलौरी बिना चटनी कैसे बनी, फ्रॉम द मूवी धमाल फोर से हमने पेश किए हैं। श्री टू है फिल्म का नाम, इसी फिल्म से ये सॉन्ग हो जाए आप सभी के वास्ते।
1: वो नहीं आने वाले।

फ्रॉम द मूवी स्त्री टू से हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो ये है, सावन में लग गई आग।

फ्रॉम द मूवी जेनी विद्स सनी, इसी फिल्म से हमने पेश किए हैं सावन में लग गई आग दिल में रहा है। श्री तू है फिल्म का नाम। इसी फिल्म से आप सुनेंगे आज की रात।

फ्रॉम द मूवी स्त्री टू से हमने पेश किए हैं आज की रात मजा हुस्न का आंखों से लीजिए। धमाल फॉर इसी फिल्म से एक और गीत हम चलाएंगे आप सभी के वास्ते, पैसा लाओ।

फ्रॉम द मूवी धमाल 4 से हमने पेश किए हैं पैसा लाओ। पति पत्नी और वो है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हम पेश करते हैं रूप दी रानी।

अभी आप सुन रहे थे रूप दी रानी फ्रॉम द मूवी पति पत्नी और वो तुम ही हो बंधु। हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते फ्रॉम द मूवी कॉकटेल से आप सुनेंगे।

अभी आप सुन रहे थे तुम ही हो बंधु सखा तुम ही, फ्रॉम द मूवी कॉकटेल से हमने पेश किए हैं। अगला गीत जो हम पेश करने वाले हैं वो है दिल्ली से दिल तक।

अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से दिल तक, ये सॉन्ग हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते। रुत्वी पांडे की आवाज़ में हम पेश करते हैं घाघरों।

आप सुन रहे थे घाघरो रुत्वी पांडे की आवाज में इश्क से आगे, ये न्यू सॉन्ग हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते।

आकाश भी की आवाज में भी आप सुन रहे थे किसका है ये तुमको इंतजार, मैं हूं ना। काश भी एक बार फिर से प्रोग्राम में आ रहे हैं, तुम अगर साथ देने का वादा करो।

आकाश बी की आवाज में भी आप सुन रहे थे तुम अगर साथ देने का वादा करो मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं। कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या।

क्या गाना है सुनने वालों, कसम वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं नातों का क्या। वाह ई आए नीले गगन के तले, चलिए मिलकर सुनते हैं।

अभी आप सुन रहे थे नीले गगन के तले। सुनने वालों, एक बहुत सा सुंदर गीत हम पेश करेंगे आप सभी के वास्ते। आप ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये गीत जो है वो सच्चाई की तरफ आपको ले जाएगी। और हम खास करके धन्यवाद देना चाहते हैं भाई सुरेन भगवान दीन जी को, जिन्होंने ये गीत मुझे भेजा और मैंने ये गीत को ढूंढ लिया और ढूंढते ढूंढते आज आपके सामने मैं ये सॉन्ग ला रही हूँ।

अभी आप सुन रहे थे 50 साल पहले, क्या हकीकत है सुनने वालों। थैंक यू ईआई। बीचक दाना, बीचक दाना।

अभी आप सुन रहे थे निशा बी और विंधा सिंह जी की आवाज में ईटक दाना बीचक दाना दाने ऊपर दाना। उषा उत्तर पा रहे हैं प्रोग्राम में। चलिए ये हो जाए आप सभी के नाम।

वाह क्या बात है। उषा उत्तप जी आपको सुना रहे थे लंबादा, बेन पराख और सविता सिंह प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों। आ भी जा माहिया।

आप सुन रहे थे सविता सिंह और बेन पराख की आवाज में रात भर मेरी पायल छलकती है। सुनने वालों, जब गर्मी होते हैं ना तो पंखा की जरूरत तो बहुत होती है। तो निशा जी यानी निशा बी जी आपको क्या सुनाने वाले हैं, बताओ? क्या नहीं बताने वाली, खुद सुन लीजिएगा।

निशा बी जी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे पंखा तो लाई दियो ना सजन जी, पंखा तो लाई दियो ना, क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी लगेगा ज़रूर। पृथ्वी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों, श्याम सुंदर गगरी

अभी आप सुन रहे थे श्याम सुंदर गगरी उठावे हमारे घरे मूंगे के माला फ्रॉम द मूवी यमला पगला दीवाना से आप सुनेंगे और आपको सुनाने वाले हैं उमर नदीम के साथ में श्रेया घोषाल जी। चलिए मिलकर सुनते हैं।

है देव के आजा तुझे प्यार करे, फ्रॉम द मूवी यमला पगला दीवाना से आपको सुनाने वाले थे उमर नदीम के साथ में श्रेया घोषाल जी। मैंने दिल तुम्हें दे दिया, अलका यज्ञिक के साथ में सुनू निगम जी आपको सुनाने वाले हैं। चलिए मिलकर सुनते हैं ये सॉन्ग।

ओ सनम फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हमने पेश किया है। अलका याग्निक और सोनू निगम जी आपको सुनाने वाले हैं। एक और सुंदर सा गीत हम पेश करते हैं इसी फिल्म से, आप सुनेंगे, तूने दी बेकरारी ए मेरे सनम।

मैंने दी बेकरारी ए मेरे सनम, अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी ब्लैकमेल से हमने पेश किए हैं। आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। एक था राजा, एक थी लड़की दीवानी।

प्यार की एक कहानी। एक था लड़का, एक थी लड़की दीवानी। अभी आप सुन रहे थे। पहली बार मोहब्बत की है, फ्रॉम द मूवी सिर्फ तुमसे आप सुनेंगे। चलिए ये सॉन्ग हो जाए।

फ्रॉम द मूवी फिजा से हम यानी फिदा से हमने पेश किए हैं दिल मेरे ना और इंतजार कर उदित नारायण के साथ में अलका याग्निक जी आपको सुनाने वाले थे। क्या दिल में कहा दत्ताई दल हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते उदित नारायण और अलका याग्निक।

क्या दिल ने कहा, क्या तुमने सुना। उदित नारायण और अलका याग्निक आपको मिलकर सुनाने यानी सुनाने वाले थे फ्रॉम द मूवी क्या दिल ने कहा। आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। सोनू निगम के साथ में श्रेया घोषाल जी आपको सुनाने वाले हैं फ्रॉम द मूवी क्रिस से आप सुनेंगे।

आओ सुनाए प्यार की एक कहानी। अभी आप सुन रहे थे फ्रॉम द मूवी क्रिस से हमने पेश की है सोनू निगम और श्रेया घोषाल आपको सुनाने वाले थे। आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है फ्रॉम द मूवी अंदाज से हम पेश करते हैं उदित नारायण और अलका यज्ञिक साथ मिलकर सुनाने वाले हैं।

आज कहना जरूरी है कि तुमसे प्यार हुआ है, फ्रॉम द मूवी अंदाज से हमने पेश किए हैं उदित नारायण और अलका याग्निक आपको मिलकर सुनाने वाले थे खूबसूरत। इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते मेरा एक सपना है कि देखो तुझे सपनों में तुमाने या माने यानी तुमाने ना माने है तू ही मेरे अपनों में। कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति जी आपको सुनाने वाले हैं।

खूबसूरत है फिल्म कनाम। इसी फिल्म से हमने पेश किए है कुमार शानू और कविता कृष्णमूर्ति जी की आवाज़ में मेरा एक सपना है कि देखूं तुझे सपनों में। कोई मेरे दिल में है, जो भी है वो क्या है बताओ, क्या नहीं बताने वाले। चलिए मिलकर सुनते हैं द टाइटल फ्रॉम द मूवी कोई मेरे दिल में है।

मेरे दिल में है जो भी है वो अपना सा है। अभी आप सुन रहे थे द टाइटल फ्रॉम द मूवी कोई मेरे दिल में है। अनुराधा पौडवाल के साथ में कुमार शानू जी आपको सुनाने वाले थे। अलका याग्निक और बाबू सुप्रियो जी प्रोग्राम में आ रहे हैं सुनने वालों। फ्रॉम द मूवी क्या यही प्यार है, मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना।

यही प्यार है फिल्म का नाम, और इसी फिल्म से हमने पेश किया है अलका याग्निक और बाबुल। सुप्रियो की आवाज में मेरी तरह तुम भी कभी प्यार करके देखो ना। अलबेला इसी फिल्म से हम पेश करते हैं अलका याग्निक और बाबुल। सुप्रियो मिलकर सुनाने वाले हैं सर से सरक गई क्या तेरी चुनरी।

अभी आप सुन रहे थे सर से सरक गई तेरी चुनरी, फ्रॉम द मूवी अलबेला से हमने पेश किया है अलका याग्निक और बाबुल सुप्रियो जी की आवाज में आप सुन रहे थे। तुमसा नहीं देखा, इसी फिल्म से हम पेश करते हैं मुझे तुमसे क्या है, आप खुद सुन लीजिएगा।

तुमसा नहीं देखा इसी फिल्म से हमने पेश की है। मुझे तुमसे मोहब्बत है दीवानगी की हद तक अभी आप सुन रहे थे सुनने वालों। फ्रॉम द मूवी रन इसी फिल्म से हम पेश करते हैं आप सभी के वास्ते तेरे आने से आए तेरे जाने से जाए दिल का करार ओ मेरी यारा।

अभी आप सुन रहे थे तेरे आने से आए तेरे जाने से जाए, फ्रॉम द मूवी रन से हमने पेश किए हैं आप सभी के वास्ते अलका याग्निक और कुमार सानू आप सभी को सुनाने वाले थे।

सुनने वालों, यहाँ तक आपने सुनी हमारे हिस्से का प्रोग्राम जो समाप्त होने पर आया। जिस तरह से हमने अपने हिस्से के प्रोग्राम पेश किए हैं, मैं आशा है कि प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आए हुए होंगे। अगर जिंदगी बाकी रहा तो आने वाले रविवार को हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए हमारी प्यार भरी। राम राम, नमस्कार, खुदा हाफिज। सभी रोजादारों को हम माह रमजान मुबारक बारी पेश कर रहे हैं। Have a blessed day until next.

तो तुरंत हम चलते हैं, कहां चलते हैं, एक रीमेक सॉन्ग की ओर हम चलते हैं हमारे दोस्तों। और ये रीमेक सॉन्ग क्या है और तुम तो जानते हैं, स्वीट मेलोडी का सॉन्ग है मोहन के मुरलिया। तो मोहन के मुरलिया तो बजते हैं भैया, और जब बजते हैं तो आपको हम कहते हैं गुनगुनाते रहो, और गुनगुनाने के बाद झूमते रहो, यानी कि इस सॉन्ग

मयूर अलामंग सुकू सुकू और कोंची सुकू सुकू भैया प्यार के सुकू सुकू के बांची ढो रहा है हमारे सुनने वालों। एक बार फिर करते हैं जॉनी नंबर वन है हमारा नाम और आपके प्रोग्राम बनाना है आपके लिए हमारा काम यही है हमारा प्यार का पैगाम। तो उसके बाद हम चलते हैं कि मेहनी लगा के रखना।

तेरी हाँ तेरू मेहनी कब लगते है जब शादी होता है ते तो धर्मेंद्र सिंह ने आपको इस गीत को गाकर सुनाए हैं दोस्तों। उसके बाद हम चलते हैं और आजकल भी बहुत योपी पोपी है और वो कौन सा गाना है शेकिंग बेबी शेकिंग।

0: कला न जाने ऊंच नीच, कला न जाने जांच, सरस्वती माता दीजिए हमको अपनी आशीर्वाद। तमाम रेडियो फोन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी राम सत श्री अकाल। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज का देश और विदेश के समाचार को सुनाना है हमारा काम, यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। तो हम तुरंत तुरंत लेकर चलते हैं, और कहां लेकर चलते हैं दोस्तों, सूरीनाम देश ले चलेंगे, और देश आप लोग को हम जरूर घुमाएंगे फिराएंगे और बताएंगे कि दुनिया पे क्या क्या हो रहा है, ये बताना तो हमारा काम है, हमारे यारो हमारे मौजी। और आप सबको हम कहते हैं हमारा रेडियो है फाहुन, जो नेहा शहर से हम लाइव प्रस्तुत करते हैं। हाँ, आप लोग सुन सकते हैं रेडियो फाहुन एफएम प्रिंट एनएल पर, लाइव पूरा दुनिया पे देख सकते हैं। तो हमारे मौसी नानी हम तुरंत चलते हैं, और कहां चलते हैं, अपना मातृभूमि अपना सूरीनाम की ओर। घाम झूरा बहुत ज्यादा है भैया सूरीनाम देश में, और अदमीलों ने का करे भैया, घास में लगा दे है आग, घास में लगा दे है आग, और जो घास में आग लगा दियो भैया, और झूरा है सब झुरान है, तो ना जाहे देखे भैया कि अगिया जाहे, अगिया कोई लकड़ी जड़ावे की पाल जड़ावे, जौनची ओकर रास्ता में रही सब भस्म कर दे मौसी, ऐसे चीजवा है ना। तो ऐसे भैया आग लगल रहा, और वही में भैया एगो घर रहा घास के साथ, और वहां घर भी जर के भस्म हुई है, और ये बात हो रहा है सूरीनाम के सरमक्का के मेरे ख्याल से दोस्तों। और ये मां एक आदमी के सब पकड़ी से, एक आदमी के पकड़ी से, और बोले अरे मिया बोले हैगा मन वेखर ब्रांडन खरास एंड फेल्ट ब्लूसन एखर वोनिंग ब्रांड ऑफ एंड हेज बीरन राख स्वार बस खादक, बोले मन वेखर ब्रांडन खरास एंड फेल्ट ब्लूसन, और बोले हैगा एखन वोने ब्रांड ऑफ, और बोले अपन एक घर उकर जरे है, और उघसिया में न जाहे का बोले अगिया बुतावे, और बोले कोपनाम वेख है एगो भैया 7 अक्टूबर के बाद थे मौसी, एगो लकड़ी के घर है फोलीडक जर के भसम हुई गया, ओकर बगले में एगो पत्थर के घर है ईंटा के घर है, जहां पे एगो द्रियन देर तक यार का एम का ये है दी एंड होते वो नहीं ब्ले सो हेवन का वेखत है फिर तो दूफन ओक ना द अकेंटन हम दार तू अब द्रा खादन खीफन दत मेल द पुलिसी। और बताए गए है बोले आने तो रोलन की जब आदमी और ओकर भाई बीरमान के बोले है कि घास में आगे ना लगाओ फॉर ब्रांडन फॉर खरास एंड फेल, तो ई एर का भैया फर और साग द रोक एर्नस्ट तक ओवर लास बोले है उतरे में वोर द विसलिंग भले भैया एंड मोंद एट अन हंद खमीन हाथ से भी झगड़ा भइल है, और बोले वेखर करी से जोन अगिया बरे ओके बुतावे के ओक तुंद अखें त सिपाही हुआ पहुंची से, बोले ओके बोले तू अगिया बुताओ अपन, बोले है फर लीड द प्लेक तरवेल तीखन पड़ते फॉर द फर्दर अफांडिंग में द पुलिस किंग स्लू हेड फिर ओवर नद होतिंग उनी वारें कि उकर एक जर के आगे से उकर घर भसम हुई गए, और वही घर फैल जरावत रहा, बीरो ओके बोले हैगा अगिया ना लगाओ अगिया बुताओ, बीरो से झगड़ा करी से और ना बुताई से सिपाही अब भी वोर दे विस्लिंग हुए हैं, और वही के घर जर के भसम हुई गए, बीरमान के ईंटा के घर भी भैया उनी फोलीड इमरांस तो हेड फियर फॉर प्राइड सिक्स नल एंड लेफ्ट देयर पन खहील इन द आस। ये बात है हमारे सूरीनाम की जनता।
1: देखो भैया तू ही परानी में केकर घरे बोले खुटपुट ना हुए झगड़ा लड़ाई तो हुए है लेकिन ये बातचीत हो रहा है निकेरी के भैया ऋषि ओम फ्रो भाई। हाँ बोले औरत के कारण झगड़ा भइल निकेरी में जहाँ पे भैया दगव्वल भइल है दगव्वल भइल है और ना खाली दगव्वल भइल है दुई आदमी मर गए भी ओ मामौसी निकेरी में दुई आदमी मर गए ऋषि ओम फ्रो मोकल आ ले रे फोर्स की तरह पड़ते में तुई दौड़न औरत के कारण लड़ाई भइल है और ये बातचीत हुए को परके प्लास सेगा तेल सूर के उस कनाल वेक न्यू निकेरी में मौसी और बताए गए हैं 8 तारीख अक्टूबर के एगो सेशन फिर तक यार के भैया के नाम अनिल बुधराम और एगो हिंदुस्तानी द्रिय फिर तक यार के रितेश मथुरा है और बोले हेड इंसिडेंट फोन थ्रोम 4:30 बजे बोले प्लास नार द पुलिस ब्यूरो और बोले फरक्लार करे डिफेंस फरक्लारिंग बोले है कि मथुरा जोरा भैया दी वर्क्स आमीज बे उलांटी में काम करे है और भैया दे एंड फी नेशनल फेल खैत के बोले दागी से मृत्र स्कूटर में से दिस वापन ओम बुधराम के ऊपर दागी से और बोले दाना से सेल्फ एवन ने पहले बुधराम के दाग के मां ढाड़ी से

और बोले हेगा ओकर बस्तूर जो कुर्सी है बोले ऊपर ओकर लेक पाई से मथुरा लाख तुसन दे तेजे ऑटो एन फन द वेट दैट यू द मार्क एक्स ऑफ द ग्राउंड मेट द स्कॉट वार्निंग एंड सेन हु बेदे मैनन लीव्ड नोग मार वारन नीट अनस्प्रीकबार डायरेक्ट ना मरल्ला मा बोले हेगा लातर सबके लेगे एंबुलेंस मुंगरा मेडिस सेंटर में और बोले पहले मथुरा मरल है तो कर बाद में बुधराम भी मर गए भैया बोले एगो खतरौदा औरत के बारे में जा है खतरौदा फ्राउ दी बेहद इंसिडेंट अनवेशक वास verklaarde dat zij ongeveer 7 jaar geleden ego geheime relatie raha Mathura ke sange bole Mathura ke sange bole humme ego geheime relatie raha 7 baris pehle ke baat hai aur bole u relatia bole sir ka ek baris mein don hui ge bhaiya aur bole hega paramaribu mein hum log chal gali bole ongeveer ek baris baad bole sau se relatie mein budhram se in bakhone tab Mathura ke relatia छोड़ के भैया गल बुधराम के पकड़ ली से तो बोले व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट रहा मैं मथुरा बिलीव बस्तान बोले ऑन नाम सोचा है मथुरा के छोड़ दे रहा साल बरिश के रिलेशन एक बरिश में मैं बोले तब वो व्हाट्सएप करत रहा मथुरा से और बोले फॉल्क द फ्रॉ मथुरा ऑन कफेर मान खलीदन बोले उन निकेरी गए लहा एंड फ्रू के हर हाल द कॉमन ऑन मीटिंग और बोले हेगा बेर बेर मात्र मथुरा से जाए ऑन मूड करे और बोले उ वे करत रहा सही वेकर द फरवेकन कि ओके रिलेशन रा बुधराम से तो बोले वारफा मथुरा फॉल्क सा नीट ऑफ द हुक द वास बोले वो संजा के 3:30 भैया ओकर बिटिया पुलिस शिविर में थ्योरी एग्जाम गईला करे रहे विवेश के पार्केर कर ले रहा अपन ओतो तेल सिर लगे हुआ पे बुधराम उफ गईल है बसुक करे पुलिस और गला इन्फॉर्मेर करे बिटी वा सलाक भल की ना हा सेनर एक सेकंड नीट मेट एट टाइम ऑफ कस ब्रोकन बुधराम को अमनार हर ऑटो एंड सो हर मेट फॉर ही फर्स्ट टाइम हेवर खफरा वारम से हम नीट विल ऑन तो बोले कहे ना तू हमसे मांगे भेंट करे तो बोले हम फॉर प्रॉब्लम ना मांगते हम प्रॉब्लम तो फोर को ने रे से नार सुपर मारे फॉल्क हार फॉल्क द बुधराम हार एंड स्टॉप द है दैट इवनिंग बोले कोर्ट दा ना फर्स्ट के ओ मथुरा बेरे सो फॉर सुपर मारक मथुरा फिन गले सुपर मारक में टरवेल द फ्रो बेरे कासा स्टोन होर द से दैट बुधराम इज ऑप्शन मोबाइल टेलीफोन एंड मथुरा टोंड द फ्रो रे तरक नारे पार्के प्लाट फन टेलीसीर वार बुधराम ना सर ऑटो पार्के द मथुरा कोम लातर फन द देखते ही बड़ा फुटकड़िया में भैया बात एमा ये बहुत लंबा चौड़ा है कि दोनों अपने में दक के मर गए हैं एक्वा एक्वा दागी से को नीख मिलीमीटर अन स्वार्थ पिस्तौल से क्लॉक से अन पत्रोन होदर में नीखन पत्रोन से चार गो दागी से फिर हिल्सन अन होस्टर एन टू मोबाइल टेलीफोन इन बसलाख नोमन ओक द कैमरा बिल्ड फॉर अ बफेलिंग सिस्टम फॉर टेलीसी टू वेयर द फेलिंग स्टेल दाना दानास नाम द पुलिस ड्री फॉर टेक इन बसला तो भैया औरत के पीछे देखो क्या होएगे दुई आदमी के जान चल गए हैं मथुरा मर गए नानी मथुरा मर गए हैं और मथुरा के साथ साथ मथुरा के साथ साथ अनिल बुधराम भी मर गए दोस्तों दैट इज द करण फंद साके और फर्दर का भैले का ना भैले अब देखो भैया एसएलएम रीजनल फ्लुक्टन एसएलएम भैया घंटन फीनो फी नो फरतराग भैले काबिन पे सुनील के कारण भैया हम लोग तो गुंती बाटी सुने के और नीसुआ बतावे के कि एसएलएम जो है कौन रकम फरतराग हुए है मार मौसी लोन नानी लोन एसएलएम पे जा है तेरे से खुद को उप है मार देखो कौन चकलस करे एसएलएम यहाँ बातचीत होएगा सुरिनाम एयरवेज के जो फरतराग फिन हो गएगा अमदाद काबिन पे सुनील स्टॉकिंग करी से भैया बोले दा जब काबिन पर्सनल नाश्ता करे तो मशीन टूटल है या मशीन न टूटल है तो कोकई न घुसेरल है जब ऊ न घुसेरल है तो ढकना न उड़े न उड़ भैया एक से एक चीज मैं जा है भैया हम दर पर्सनल कभी न पर्सनल वास अन स्टक इन दैट ब्लैक आउट एन अंश पास फ्लिक स्कीमा दूर द लुफ्टफार्ट मास्कपे इज फर्स्प्रेड और बोले पीवाई 431 के बातचीत हुए है जो ना नीदरलैंड और भैया अरुबा किरा सऊदी लातर जाई के उड़ल है नहतू स्टेल फॉर ट्रैक से फॉर यूर फॉर एट पारमारी बूना आ अरुबा वार है ओम क्वांट फोर

7, 8 uur, 5 uur aankomst. Ja, betekent je dus toch volgens vertrekt het om 7:45. Raadke Curaçao Oruurlhe met een geplande aankomst van 20:15 uur. Deze terugvlucht naar Paramaribo staat gepland voor 21 uur. Aankomst, ik wil je raadke bijna dus tot die vertrekking wat de SLM ke hem doen gewinti hoe je geleden aan Auro, ik ben het, we weten dat KLM weer vertragen weer, heel veel vluchten vertragen weer. Hamlo in Janila, maar de SLM me bijtje, dan heb je een direct kampen liggen op tijd. Uri kina, uri chahe skipholpe, o chahe sandreipe, dat is gewoon de vaste. Dat zijn de vaste dingetjes. Automobiel is aangehouden met vals rijbewijs. Bij verkeerscontrole te reisdek me bhaiya. Auro bhaiya, oké, si paai, pakali se verkeerscontrole, bhaiya, resort reisdek me. Obole, hij overhandigde bij de controle aan rijbewijs dat vals bleek te zijn. Rijbewijs was vals. Kalera bhaiya ha bole fraude ke pakalle se Suriname mein bhaiya ye cheez bhail hai to hum boli bata di ab dekho bhaiya sarnam ke na neelalan ke dukaan hai duwan hai jo hai utogwinti hai pinda ka sime ko kai na paave ke nani machhari mein पैचल में सांबल में केचप में काबुले सिर खुद में मसाला में चाउर में ओतो के अंदर दिल में द्राखलाइन पोकलाइन के मत बरे काबुली मौसी बकी पहला दाई हम सुनेला भैया पहला दाई सुनेला को के इन पाई से नीदरलैंड के और दुआन ताताई में सर नाम से भैया बोली जोनी ततैया में कैसे रहा तो हिया बतावे सबन ऑन डेक करी से बस कैरमिंग टावर में द फरदोफन मिडलन वारन इन हेड मटेरियल फ्रॉम द टावर ग इंप्रेगमेंटेड भैया कोकाइनवा ततैया में धलकी ओई में जमा दे रहा है टोटल भाषा में बोले जाए इंप्रेगमेंटेड कर ले रहा और भैया द फोन्स वेर खाना टेजेंस फिजिकल कंट्रोल तुलो जाने सुरिनाम के कोकेन दुआन 100% कंट्रोल है तो इस पर बेरी करे दादाई में हवड़ा करे के बेट अंडरसुकन फन टोन अन अन चाइन द दुआन इज ऑफ द फरदोफन द मिडलन उसे अंडर करी से बोले हैगा हर किंग दिस नीड ओम लॉस अ पाकी द टिसन द टोन वारन फॉर स्टॉप हर मटेरियल सेल्फ वाज अन ड्रग्स डोर ड्रंक Oma giet kralla, een soort mensen impregmenteer kralla, jamawalla. De douane ik er waren mee. Bole deelde de ontdekking op Facebook met de woordspelling van gelukkig konden onze douanes hier wel een touw vast knopen. Bij het bericht plaatsen deze foto waren we verzamelen voornamelijk. Ujjar ujjar tatai bhaiya gaanthi devalla, ik ben impregmenteer kralla. Konchi nani, konchi koka. Cocaïne om te impregmenteer kerelha, hamari, piari, piari, janta, Holland ke, auru, hamari, Suriname ke, janta, ab jahan bhi ho, hamara, piara, ab ke, saathe, auru, bhul na jana, 11 tarikh se, navratri, chalega, pura dunia me. अभी से बोल ले आप सबको एक शुभ नवरात्र हुए रेडियो फाहुन के पूरा पूरा टीम से तो हमारे मौसी एम जायला सरनाम विल साम में गयाना रेखियो फूदन तेजन से कारी कॉम्फोर्ट से बोले कारी कॉम के तू जाने हुआ पे काबुल लगे है कराइबिस की जैसे ही यूरोपा के है एयू है उसे सुरीनाम में है कारी को तो गायाना और सरनाम मांगे सबके खाई से फूद करे भाई सुरीनाम वेल हेड कोमन द कारी कॉम फोर सीटर्स का अनखरे पे मांगे फोर सीटर बने और बोलेगा संगे
samen Guyana zijn mange gekhaik voedselvoorzieningen van de regio te versterken. Ook minder afhankelijkheid van externe energiebronnen en betere verbinding tussen de landen krijgen prioriteit. De verbinding is alleen maar bij Aachikikoro, Panero, Curaçao, Kabele, Aruba, met vertraag bij Leimang, betere verbinding. President Jennifer Simon neemt vanaf 1 januari tot 30 januari al voorzitterschap van de conferentie van de regeringsleider op zich. Toen betekent het 52e reguleerde vergadering van de conferentie van de regeringsleden. Mensen bijeenkomst die van 16 tot 19 februari. Chaliga Uberiske, Orbolega Biesgoed worden 20 tot 25 hoogwaardigheden bekleders uit de regio en daarbuiten verwacht. Daarnaast regionale internationale pers aanwezig zijn. Mensen melden minister van de Buitenlandse Zaken, Internationale Handel en Samenwerking in het persbericht. Toen hier betekent je maar die pjarie genta. Bolle betere verbinding door de lucht, over het water en over land moeten handel, investering, toerisme en vrij verkeer ondersteunen. Daarnaast wil Suriname kunstmatige intelligentie op de regionale agenda plaatsen. Mensen, de technologie moet bijdragen aan beter gezondheid, onderwijs en dienstverlening. Dan hoop ik namelijk dat allemaal bij de Carillon goed moet gaan, mensen. Toen eerst hebben we aan het aanvloeken. Wat heet je Suriname, Guyana, Mange, Rikio, export kree. Toen voet kree, ja, zou dat panisee. हमारी जनता हम और आगे मांगिल जाए हॉफ प्रेसिडेंट जोन हैगा हॉफ के मतलब के रेक्टर के हॉफ फॉर यूसीसी प्रेसिडेंट जोन है प्लेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल वारबोर्गन बाय द डर्ड रेक्टलिक इंस्टेंसी के बारे में तो यहां बतावे हैगा प्रेसिडेंट जोन हॉफ के हैगा यूसीसी को हैगा इवान रूसाल बक्स हैगा बोले हैगा कॉन्स्टिट्यूशनल वारबोर्गन नोसाकलिक सेन ऑन द afhankelijkheid en deskundigheid van de voorgestelde derde rechtelijke instantie te garanderen. Toen je niet weet, heb je op de maatregelen gebetaald. Kies maar mange hega albina me bhi ego gerechtshof banawe. En ze zijn al bezig geweest, mensen. Rechtelijke maak als waarborg van de rechtsstaat. Roussal Bakska, bole president van de justitie. Bollehega stond ook stil bij de bredere betekenis van de rechtelijke macht voor de samenleving. Volgens hem vervulde rechtspraak een fundamentele rol binnen de rechtsstaat. Mensen, toch in hem chota roep me aapko, bata dete he, hem lukke hof van president joon he, ou he Ivan Roussal Baks ke baare me, hamari pyare, meetha janta. अब देखो भैया फैया पी के ओर जाएला फैया पी बोले दख देन मरोंस सामन हर देंकन एन सामन पवन बोले है जुका के जो मरोंस के सबन बोले जुका बोले उरोज और बोले हैगा फैया पी बोले है दख देन मरोंस मांगे सबन सामन हर देंक करे और वो बोले हैगा 10 तारीख अक्टूबर के सबन फीरी करेगा दख देन मरोंस यानी जुका के दाग और देश भी सुंदर दाग बोले फिया पे बोले हैगा मांगे हैगा geschiedenis, de kracht, veerkracht en waardevolle bijdragen aan de Marongemeenschap, aan de ontwikkeling van Suriname. Het is een dag om onze ouders te herdenken, onze geschiedenis te erkennen en met respect en vertrouwen naar de toekomst te kijken. Op het AWVHP benadrukte, bollega, samhorigheid, wederzijds worden respect, jahinkarike, nationale verbondenheid, mange, kracht van Suriname in de diversiteit van bevolking in ons verbogen. De geschiedenis van Maron is de geschiedenis van de moet mensen Marons kebare mange VHP samen jij ke vieren kare or je baan aanplukko hum bata dete Marons dag aane wale hai. हमारे जनता हम चलते हैं और आगे को अपना समाचार को लेकर और देश के समाचार आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे बैतलांत के समाचार भी आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे नीदरलैंड के कुछ समाचार भी आप लोग को हम सुनाएंगे
Trump wil internationale strafhof in Den Haag lammen leggen met nieuwe sancties. Bhaiya, Trump. Ja, deko, bhaiya, Trump. Apen hatauri leike, ja, he. Hatauri leike, ja, he. Als wereldleider. Apumange Den Haag met John, hamlo in Den Haag met jaha, hamlo bati isame pe. Jaha, radio fahon bhi hai, hamare janta. Jaha, radio fahon bhi hai. Aur wahan pe mange hai Trump. Nationale Trump wil internationale strafhof in Den Haag lam leggen. Via Verenigde Staten zoek waar ke ik was sancties aankondig karisega John Den Haag met internationale strafhof hai. Fahun se bahu dur na bhaiya thore din mein pahunch jaiye batawe gaye hai bole hai individuele rechters waren gericht is het nu bedoeling het strafhof zelf lam te leggen. Toen betekende de staf mankeerde een ongekende escalatie in de strijd die Washington onder Donald Trump tegen de ICC voert. Amerika bolle he, waren ook bij zijn komst geen fan van de strafhof, maar gedoogden het in zekere zin wel. Toen hier wat hij mangen lam leggen kreeg, Trump mangen hebben ja, VS bolle he gaan op ramkoers met Europese bondgenoten. Het strafhof spreekt in een verklaring van een aanval op de rechtsstaat van de internationale rechtsorde. Op het AW hoofdaanklager Joningen Neshat Samin Khan besloot dat de onderzoeken en strafrechtelijke vervolging van de ICC doorgaan. De sancties volgen elkaar uren na de toekenning van een Nobelprijs voor de vrede voor de voormalige rechter Navi Pillay. Toen Hamara Den Haag ke baat he John Bhaiya Trump mange he Trump mange hai hum log ke international strafhof jo Den Haag mein hai okay mange hai sanctions kare bhaiya ab dekho hum jaye tere Italy ki aur Italy mein bhaiya chori kon ki bhaiya na sona gahana bhaiya keti na chori bhaile gatai mein se jaise sanna mein jab dekho to koi ke gatai ghinch le ja to koi ke ghar chori kar le ja to ka le ja bhaiya hiya Italy mein bhaiya agar yog namba toscan bole hai hua chor lon bhaiya 30,000 बोतल वेन चुराई से इटालिया के और वो वार्दे हैं ongeveer 5 मिलियन यूरो के भाई 30,000 फ्लेशन वेन चुराई लिए ना जेब ही में चल ले के चल गए मौसी को नो बड़का चीज है ये चीज भैले सोंदाख के रात के भैल है बेहद वेन हाउस बतावे है जेकर नाम मार्शेसी अंटीनोरी इन कोर्टोना में चोरों सात मिला से गईल है मिनिमल में से सेफ मेंशन गईल है और बोले इसे का करी से अलार्म सिस्टम ओम सेलक करी से फेलक है इस कैमरा आउट स्काकल करी से और बतावे गईले को हेफ्ट रुक से वेन घरवा में और बोले वेन वन चोराई से दुई फराख वाहन लादी से भैया दुई फराख वाहन लादी से और बताए गएगा द डिजिटल वर्सो मार के सब ऑन डेक करी से जब कम करतन गए वेन हाउस में देखे वेन हाउस सब खाली है नानी बोले 120 to 300 यूरो पर स्टक एक बोतल बिका है वेन वन तू जाने महंगा महंगा वेन है इटाली के नली दल वाला भैया 500 रुपया में जोन पाए जइयो ऐसे चीज ना है और बताए दस स्टोलन फ्लेशन से इंटेंशन 120 एंड 300 यूरो और बताए गए हैगा इटाली बोले यालक्स वर्दन एसएस 100 तो 700,000 फ्लेशन वेन खमा और बोलेगा चेसी अंटीनोरी डायरेक्टर रेंसो कोटारेला बोले सोचे है कि चोरवन को मोई से फोर भराई रहा और सब कुछ ओम सेल करके और उतरा ढेर बोतल वेन और लो चोरी करके और भग गए है हमारे प्यारे प्यारे जनता ये सब बहुत सोचने के बाद है कि चोरन कितना चालाक हो गए है हमारे जनता तरी हम जाई भैया तरी हम जाई अपन यतन के ओर भैया रोप यतन हम लोग के प्रेमी ही है दनहाक के बोले है एट दिस क्रूशियल
dat de voor de Amerika aangekondigde sancties niet direct in werking treden, zegt premier Rob Jetten. Dat geeft essentiële ruimte voor dialoog met de Amerikaanse regering. Nederland staat volledig achter het EC internationale gerechtshofgebaat en de sancties zijn zeer betreurswaardig, aldus premier van ons Nederland. En dat is meneer Rob Jetten. Hamare janta hoor ha hai. To Nederland ke aap log ko jarur hum samachar batayenge. Ab dekho bhaiya Asil Sukar ke banchi jo hue hain Nederland mein, to tu jane hiya ke rakhe re Asil Sukar ke surgu kare ke esta plaas dhari se mausi ladkan aaj kal ghar dwar khoje na pavel ke Asil Sukar ke sab kuch mile hain. To hiya bataye faneenig van Nederlandse gemeente jo nahi ga VNG bole oproep kare hain bole korte termijn mee, bolego opvang aan te bieden voor asielzoekers in de nacht van donderdag gezoeken, hebben tientallen mensen buiten het aanmeldencentrum ter Apel geslapen. Of bole de vereniging noemt dat schrijndelen. Of mee het raadheer, hamloke de suame, de kabolega dakloze, admijon, larkanjone, gharnakin pawe, narhe, bab maike gare, kamara koje, ikoje, okarbare mee, isep kuch kare na. है भैया और अब देखो ना बोलेला कि उसे पे हेल्प ना चाहिए करे के मर देंग ओक अमेज अन्य एक मेंद तुलों जानो भैया फिर वैरक 2025 से ना माखे दागे के दत वेते वे इन नीदरलैंड में से दसे न्यू रीगल्स आल अब देखो यहां क्या हो रहा है लंदलक बोलेगा इन लीफर अक्षी भले फिर वैरक के meer dan 75-100 kilo bole army lever kar chukale aur bataye gaye ko campaign se start kari se iste landlak campaign hai jo army jaye ke aur fir werk lever kar sake is samay pe ongeveer 7650 kilo fir werk sab lever kar de se justitie en politie ke veiligheid ke minister bekend kari se bole sluiten van de 35ste laste inleverspunt in vrijdag is in Horen. बताए गए हमारे जनता स्वोल में 528 किलो लेवार्डम 609 किलो बनलीफर भैले तरनुईसे में 11 किलो फेनलो एमन तिलबुरग मास्टरिक देन हेल्डर देन बॉस आलमेर ब्लीप ऑन हुफेल है ऑनकफेल 100 किलो हेड ग्रोस्टेड डील इज 6500 किलो बस्टाट एट een consumentenvuurwerk dat mocht bij de vorige jaarwisseling nog worden afgestoken, maar is bij de komende oud en nieuw verboden. Verder leven de mensen bijna 1000 kilo vuurwerk met flitspoeder in, zoals strijkers. Ook kwam er 500 kilo noodsignalen. Totelon Jano, hij heeft een berichtje gegeven in Nederland met hier vuurwerk. Namelijk dagen die karen die behoed slachtoffer hebben, auto botom aange dheer lage hè. En het raar leven met mijn mam Jane lebe behoed dheer bijre hoi, bijja. जब डेमोंस्ट्रेशन हुए हैं ततु अपरे जाने हैं कि केतरा डेमोंस्ट्रेशन में सबन बहरे दागे हैं सिपाही के ऊपर से भी बिगे हैं. देखो भैया अब हम जाएला सूडान के सूडान के ओर सूडान में एक ड्रोन अनफाल भले हुए है जहां पे 26 सेशन 20 औरत और चार गो लड़का मर गए भाई. एकर बारे में हुआ के खुफने लोकाल के बकेन करी से और बतावे हैगा कि पैरामिलिटर जोन बा RFS हैगा दी आल यारन अन ओरलोग उटफेक्टन में रखेरिंग्स लीडर वो एक पैरामिलिटर हैगा और उस सब रखेरिंग के सूर जाती से लड़े हैं बोले अनफाल करी से गोरी यू के हुआ नाम बा वात अल माही और बोले वो ग्रेन से इथियोपिया के बोले इन दैट लैंड वर सिंस कोर्ट गफक्तन भैया जैसे येमन के हुतूस लोन जो हुआ पे दागे हैं यॉर्डानिया में तो ऐसे यहां पे सबन इथियोपिया में सबन रखेरिंग से दागे और बोले स्लाख्तोफर भैले दो दो ड्रोन अनफाल जहां पे जवान जवान औरत मलेले यंग फ्राउन दी वर्कन अन अ सेफरन फन हॉट कोलंबियस फ्लग बेल्ट एंड हैव फ्लक्स काम वार्ड वुंडन.
और बताई गई है 2023 में 200,000 आदमी मर गए रहा, बेना 20 मिलियन आदमी सेन ऑफ द फ्लुख खसलाखन ते इस सब चीज भइल है सूडान में भैया, नीदरलैंड में श्रीराम के आदमी बहुत सुने हमारा न्यूज हम जानते हैं, तो आप लोग को बताएं कि सूडान में ये चीज भइल है और जोनी आप लोग को पूरा दुनिया के समाचार को सुनाते हैं बताते हैं सूडान इधरी तो हमें जो ऑफ द होस्ट सेन अन फंड वीरल की कौन ची हुए है दुनिया में हमारे जनता। देखो भैया अब हम जाई है तरी सेलेंस्की के ओर उक्रेन के बड़का स्कादे भैया स्ट्रोम ने दुर अनफल रुसलान करी से उक्रेनी ना इन्दम अनहार हो गए भाई, डामों पे स्ट्रोम ना है रूसी अनफल कैसे उक्रेन पे ओकर इलेक्ट्रिसिटी नेट के uitgebreide schade भइलेगा toegebracht. Ik er bare mee president Zelensky John heen. U betawe he bole herstelwerk gaat de klok rondoor. Ze ben banawe maan bena luk bijle hier betawe he. Bole Rusland kiet voorziening als die van stroom, water en verwarming al langer als doel weet voor de aanvallen met drones en raketten. Het land is erop uit om die plat te leggen en Oekraïne komende winter in het donker en koud te zetten, staat in de Russische plannen waaronder Kiev volgens de New York Times de hand zou hebben gelegd. अब हुआ बेचारा लोन अनहार में है और रुसलान के पुतिन जो है हे ब्लाइव मार दी ड्रोन स्कीट एन स्कीट अनफाल दून ओप ओप सेलेंस्की से लाउन ओक इने के बांचित है हमारे प्यारे प्यारे प्यारे प्यारे जनता, आपको ये सब समाचार हम सुनाते हैं। तो हम सोचे आप लोग को एक गीत हम सुना दे, तो गीत के बाद में तो हम अभी चले आएंगे और जब चले आएंगे तो हम आप लोग को और आगे को सुनाएंगे कि क्या क्या और कौन से समाचार आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों।

हमारी जनता हम, तो हमारी जनता हम जा रहे हैं फिर से सूरीनाम देश, और सूरीनाम देश के समाचार आपको हम सुनाएंगे भैया। आज काल जोन है चोरी चपाटी रूफर्स लोन बैसिगिरी ब्रोमफीस पे भी चले सरना में भाई। अब देखो दुई को क्रिमिनल भैया दौंदर दाख के रात के दिन धूफरे नानी दिनवे के कला कालक ब्रांस त्रांस नाम में दिन दुपरे भैया ओवर फाल करी से हाँ सेशन फाइव तक यार के एगो से बी के फांद कौन तक स्लुइटल्स फंक्शन विद त्योता ओकर ओतो के बच का बोले चाबी ले ली से एगो त्योता हैरियर भैया दरनास ओके सोना के आला कुंद्रे हाउस केटिंग रहा एन अ रिंग वेखन उमन हमने निकेशन केती भैया आला कुंद्रे हाउस केटिंग सुनाम में सबन मोटा मोटा केती पहिर के चले भाई हम तो देरफ ना करीला घड़ी पहिर के चले के हुआ पे एकर केती अंगूठी सब ले गए हमने नूरिया काट के ले गए निकार के ले गए भाई मैं तो जाने सबन मोटा मोटा पहिर के चलावे है पहिर के घूमे हैं तो तू तो भैया जहाँ शुक्र है वहाँ पे चूटी बहुत ढेर सर नाम में घूमे जो चूटियन रोके लपेटी तो को सेशन फेर तक यार रख दे एंड फियर वेसला ऊपर से दे एंड फियर अब देखो चक्कलस भैया अपरे दे एंड फियर भाई और बोलेगा फेल खैत के आदमी बा ही के चौराई से गहिया बतावे हैगा फन है व्यर्थ स्वार्थ मोबाइल टेलीफोन सेल फोन में इखनू में ते पिस्तौल वा दियन फेवा अपन कहां धल ले रहा द फरदख्तन वारन खवापन में पिस्तौल और बोले हैगा बरों फीस पे रहा और शफीद एटमोस्ट्रेट में सब चलावे जात रहा एकर बारे में अनका बोले सिपाही हरमान गुदिंग वेर कोर्ना कोर्दाना खमेल्ट मेलने खमा और बोले सिर नाम से पुलिस में ऑन शुक्र माना लिखले की इदियन अरवा भैया अपन पिस्तौल वा काहे ना निकार के चोरवन के तू फैला खै के आदमी बाटे हां दिस फैला खै के और अपने आप के तू फैला ना कर पहले दे एन फियर एन बर्गर है तो ये बात है ना बताई से कर बारे में कैसे तो रिया है हमारे प्यारे प्यारे पुलिस नेम आन खपास्ट ब्रोमफिसर एन अंडर डेलन बसला ए रिक्यो वेस्ट में भाई तो एक बारे में अबे मौका मिली तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे कि चिचुआ कैसे है हमारे नानी। अब देखो यहाँ सबन बोले है वेरल बांग बोले है सर नाम के एक नोमी जो है त्वी दैसन अख्तन त्विन तक में बोले स्नेलर खुरियर हुई दाना गयाना से एक होप दात में से वेरल बांग में कर्जा लेवा है तो वेरल बांग की बतिया बोले है वार है कि ना भाई अल्लाह तो ये सिन वन विवेत अनमाल हु द सुरनाम जैन दी द इकोनॉमी दान द्राय सर नाम के इकोनॉमी बोले फरवाख करे तो ये दैसन अख्तन तुन तंग में गयाना से ज्यादा बोले कि खुरुए हुईगा और बोले हैगा अन अन लैटिन अमेरिका एंड कैरिबियन खबीर फन अक्टूबर 26 में द वेरा बैंक नाम द रियल इकोनॉमिक ग्रोथ फन सुरिनाम इन 28 op 21.5 tegen 15.3% van Guyana तो अब पिछली वार है कि ना वार है लेकिन बताना हमारा काम है ना तो वार होप में से दते एक नोपी फंसरी नाम नो हार्डर खात हुई है मार दार बैन के एम बीच बांग इरफान ओम दैट वी हैव गेन वर्ट्राउ वी मेड डोर ऑल द सिचुएशन सो फील लीनिंग एंड सो फील माय वेर बांग दी होत ऑल इन द हार्ट द बेस्ट मेन से और बता दी सुरिनाम के कोर्स 41.25 SRD 1 यूरो पे और जे यकीन है तो 42.15 SRD है और जो कीने तब जो बेचे तब 41.25 है अमेरिकन डॉलर है 37.50 में से जो बेचे तब और जो कीने तो 37.80 हैगा $1 के बाद चित हुए है हमारी जनता मीठा मीठा जनता प्यारे प्यारे जनता स्वीती स्वीती जनता। तो हम चलते हैं और आगे भैया समाचार को लेकर यहाँ बताए गए हैं हमारे नानी सरनाम के परमारीबो नॉर्थ के आदमी भैया बहुत जबर कलाख करी से
क्लाख्त करी से बोले उसे मांगे है का जितना प्रतोष्टवी है जो औरत या मरत हुआ धंधा करे। आज का मर्दाना भी सरना में धंधा करे भैया, या नीदरलैंड में भी भैया धंधा करे मर्दाना जो समझा बोल सके खाली औरत प्रतोष्टवी ऐसे ओक मानंद गेस दिदुन ओक अलमाल अन ओवरऑल नामलक अन अन अन प्रतोष्टवी वरक अपन शरीर बेच के पैसा कमा है। तो यहाँ बातचीत हो रहा है गा परमारी बो नॉर्थ विलन आनपाक प्रतोष्टवी डिस्क्रिमिनलिटी एंड ओवरलास्ट परमारी बो नॉर्थ में बोले है वहाँ पे बोले बड़ी ढेर प्रतोष्टवी है और वहाँ पे रोफ हो गए सब एक नाम बोले है गा बोनर्स जो परमारी बो नॉर्थ के है उनका नाम है सो का नाम बीरती क्रुतु नेगने में बोले हिंदुस्तानी में बोले है कैसे बोलिए भैया जैसे कि पंचायत हिंदी में सब बोले है इसे बिरती क्रुतु हुए है और सब आंदाख मानी से लीव बार है फेलक है इन हिन वोनिंग ओमखेवन आंतस्तास्तन बोले एक इलिखाल बहु हुए हैं डाम पे बोले स्त्राज प्रतोष्टवी हुए है दृक्ष बिका है क्रिमिनालिटी आई थे बाजा बहुत जोर बजे खलत ओफला से एंड अनवीचक है फन खोत आपको बदरेफन बहुन तो मलंग रेस तो अंडरवेयर पर तेज से बहिन कोम्स अंदर और द कोमन जो सोना कीने भैया ओ सब ये आयल हां और एकर बारे में जो जो ने मतलब कि ने इनिशिएटिव नहीं मरेगा आ रिस्टो केली बोले हैगा साकन इंटरव्यू प्लाट फिंड द ड्रिंगन ऑन द फर्दीनर। तो हमारा भैया यूसीसी के मिनिस्टर और का नाम है भैया मनोरथ हनीस मनोरथ के चाहिए कि अंदाज करे कि जनता अब बोले है हम लोग के भीड़ की बहुत ऊपर लाश हो गए है एंड हियर मुतर वेल ऑल इस कदान वर्द और ट्विटर भी फरकादिंग में बोले है बिरती क्रुतु परमारी वो में बोले इस द बेन कोट फॉर के इवैल्यूएट और बताई गई ऑथोरिटेट अनुवेशक में ओवरलेख हुआ के डीसी मार्लोन बुदिका आयला ब्यूट मैनेजर आयला टीम वेक अखेंट आयला एर लीडर आयला हॉगवार्ड बकलीडर्स आयला और बोले फोकस केली इस बलंगरेक दैट बोनर्स इन ऑथोरिटेट का सामलक बस्प्रेकन वेलकम प्रॉब्लम में मुतर वर्डन आंगपाक ऑन द फेलिगेट एंड लीवबारहेट इन द वेक फॉरबीटन। तो ये बात हो रहा है भैया कि अप्रेस अब जनता अपन फेलिगेट खोजे है हमारा देश के जो ने वहां के एनजीसी है या रखेरिंग है उस सब के ना देखा है कि कौन भीड़ कहां ऑन फेलक है कहां ई सब चीज होवे है एंड देन मुद बीरती बीरती क्रुतु बीर हियर ओवर gaan praten is niet slecht mensen, we moeten dat allemaal kunnen doen, maar er zijn ook heel veel problemen in het land die niet aangepakt wordt op door bepaalde instanties. Als je namelijk verantwoord bent van jouw eigen dingetjes, dan moet je wel de verantwoordelijkheid nemen om dat goed te laten doen. Als je aap namelijk ke koi dharm ke baato aur to haar dharm mein koi misbruik kare hai to sab ke recht hai wo apan dharm ke raksha kare ke awaaz uthave ke ki hamara dharm mein kuch gadbadi na chahi hove ke ya christian ho ya hindu ho ya sanatan ho ya arya ho ya je bhi ho tumhara apan dharm ke bare mein sab ke apne khuy manier awaaz chahi uthave ke aur agar aur khani satsik admi baate na moet je zeker ook meedoen om dat netjes en goed te laten aflopen, niet persoonlijk voor één persoon of twee persoon, maar in algemene belang moet iedereen deze aatje buurtcrew toe gaan op een aanwaas uitreizen ke hamara gauw mee hamara jaghaan pe protest twee hoewe drugs deal hoewe he geluids overlaas hoewe hega aur kaka na hoewe he en dan hebben ze aandacht gevraagd aise chahinga sab koi ke kareke चाहे सुरीनाम है या नीदरलैंड है और इंडिया है सगरो तो होवे भैया कहे हमारे सुरीनाम में ना हो इसका चलो हम भैया खेतियर की ओर अखरा अने अराख अने का बोले खेतियर हाँ अनुर सलीम बोले है
बोले खेतियर भैया फ्रांतोरलक फॉर फैलक फुचल खेतियर के चाही खेती बारी फैलक कर ओकर ओकर फ्रांतोरलक दवाई ढकले रे भैया और भाटा में कोरो में महिया बोले अर का बोले लांग बाउट स्पीलम लांगरे का रोल बेड बस्केर में फना फलोसनाट है ऑन यूज इट अनकंट्रोलड गebruik van een pesticiden kan leiden tot schadelijke residuen in landbouwproducten. Waarmee minister John LVP ke oh de heer Noor Salim ekar bare mein boli si ki khetiyar ke chahi apre dekhe ke कि कैसे है कैसे ना है हपा सौदा में हम कितना कितना दवाई मारब और कितना दवाई इन्ना मारब ये बातचीत हुए है हमारी जनता हमारे प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर जनता। अब देखो भैया यहाँ पे बतावे सूरीनाम से नीदरलैंडर भैया सरनाम के नीदरलैंडर यहाँ आम्स्टरडाम में भैया खलीख देर तो भैल है हाँ एगो फिर देर तख्त यारख ओकर नाम बा किशन कुमार आज केस बाबूराम अ नीदरलैंडर फा सूरीनाम से और शीन इस इन द नाक शुक्रवार शनिवार के रात के सबन ओके काफी साउथ पोलो में जो आम्स्टरडाम से फीन वेक में आम्स्टरडाम में ओके सबन डाक के माधारी से कोर्ट टाइट लाटर वेट एंड 32 यार का फरदाख्त इन एन वोनिंग आंखाउदन द पुलिस खात आउट एन दूल खरेक लुकिडाची Obole Baburam werd rond 2:30 in de hoofd geschoten toen hij op de stoep voor de baar zat te praten met anderen. Toegesnelde hulpverlener probeerde hem te reanimeren, maar te vergeef mensen. Oemmerge he, toen hij betaalde Holendrecht mee. Baburam heeft volgens diverse Nederlandse media zijn jeugd doorgebracht in Den Helder. Hij verhuisde later naar Amsterdam, waar hij eerst een tijd in Amsterdam-Noord woonde voordat hij zich vestigde in de wijk van Holendrecht in Amsterdam Noordoost. Deze week stond bekend als de vele criminelen die er wonen, met name van Surinaamse Antilliaanse afkomst. Te Batavega skurkte tegen de harde hooligantenkern van Ajax. Bolle stond hij bij bekend, niet bekend als een zware crimineel, werd door de mensen uit de omgeving gezegd, maar toch ze van oké, legendeer kan dit van jou dakje, maar dat is ze. Maar de dader is wel gepakt, mensen. Dat is een beetje de hele situatie. Aap lo kego chatni hem sunai dei. To abhi hem aan jayenge.

पोशब्र जो मशहूर है आदमी जो खुद खुद मरे हैं और हमारे हंसू के लोग जो है बहुत खबर माग करें यहाँ से आदमी जहाँ घूमे तो उससे ही कर जा है यानी कि बोशब्रुक पे एगो रिचर आई करे बाकी भैया बेशब्रोक पे भैया पेड़ जमे लगल है ई देखो कौन चकल्लस भाईल है तो सोचो सिरिनाम के बोशब्रुक पे भैया पेड़ जमे लगल है ना मोई मोई कोई खाद बोई से भैया अंदर हो ना हो है बोले है इतना फरकेस दृक्ते कर बारे में एनडीपी के पार्लियामेंटेरियन जो है और वह इंग्रिड कार्ता बिंग बोले है मंगलवार के आंदाख मांगे हैं कि इतना जबर फील है बड़का बड़का ट्रांसपोर्ट ब्रेक हुआ ट्रक लोन पास हुए सिपाही लोन हुआ फरकेस रिकल करे तरी से लोप हुए मैं फिर भी बोले बहुत ज्यादा बोले है गफील है 5 किलोमीटर ऑन खफीर बतावे और बोले से मेरे इन मिडल्स के बुड़किया के नीचे भैया पेड़ जमे हैं पलवन पे ओ वे के बोली से ओ पंबार वेर के बोले ओके जाओ तुरंत तरी जंगलियो तो सफा करो पेड़ के नीचे जंगल हुए पेड़ जमे लगल बुड़की के नीचे रेला रही खलमा तक वोट इंस्पेक्टर एंड ऑफ स्कोन मार्क बुड़ कान वर्धन एट खफूर gaat het over de Oost-West-verbinding, 5 kilometer lang, vele mensen. En dat is wel, geef ik deze mevrouw, natuurlijk voorkeur. दोस्तों हमारा समय आ गया है जाने को और 1 घंटा का समाचार आपको हम सुना दिया है सुनने के लिए बहुत बहुत बहुत बहुत धन्यवाद हमारा नाम है जॉनी लास्ट बोले भैया मदुरा एंड एखनोतर स्केरन में सर 5 बरिस के जल ना न्यू अनखलाक वेसर मार्टलिंग के बारे में ये आखिरी समाचार हमारे थे आज के हमारे जनता सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राम राम नमस्कार और प्यार भरी अदाब सत श्री अकाल जॉनी नंबर 1 है और सलाम।

हरिओम मेघिदम भैया बीरबल के स्टाइल में कैसे रहलो आप लोग पाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का आवाज का दुनिया के दोस्तों स्वीकार कीजिए हम लोगों का सागर से भरा हुआ प्यार नमस्कार और साथ ही साथ कबूल कीजिए हम लोगों का मोहब्बत से भरी हुई सलाम को और आप सभी को हरिओम हरि बोल सत श्री अकाल। मैं हूँ आप लोग का सेवक खिदमतगार सुरेंद्र कृष्णानंद भगवान दीन जिसे आप ढेर सारे श्रोता गुण आकाशवाणी के दोस्तों भैया बीरबल के नाम से भी जानते हैं। रविवार शाम का प्रोग्राम साप्ताहिक कार्यक्रम लेकर उपस्थित हुआ हूँ यारो सरनामी संगीत और कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री यही आशा उम्मीद लेकर के आज का सिलेक्शन भी आप सभी को जरूर पसंद आएगा। तो जहां पर भी हो जिस साल में हो घर पे हो या तो मोटर कार में सफर कर रहे हो या तो काम कर रहे हो दुनिया के जो भी कोने में ये कार्यक्रम आप सभी सुन रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे और हमारे फूल टीम के तरफ से आप सभी को एक हैप्पी हैप्पी संडे हैप्पी हैप्पी मंडे और हैप्पी हैप्पी वीकेंड होना चाहिए हैप्पी हैप्पी संडे ना तिलक और आप सभी को हमारे फूल टीम के तरफ से एक शुभ नवरात्रि भी। हो सकता है कि आपके घर पे खुशी का दिन मनाया जा रहा है जैसे तमाम लोग इस नवरात्रि मना रहे हैं और हो सकता है कि आपके घर पे एक बेटा या तो एक बेटी ने जन्म लिया होगा या तो किसी की जन्मदिन आप सभी धूमधाम से मिलकर मना रहे हैं। जो भी खुशी के दिन आप सभी मना रहे हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के फूल टीम की तरफ से आप सभी को ढेर सारे बधाइयाँ बधाइयाँ खुशियाँ खुशियाँ प्यार मोहब्बत के साथ पेश है और परम पिता परमेश्वर से हम सब मिलकर विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं नेक इरादे सभी पूर्ण होते जाए। खास करके नवरात्रि भी चल रहे हैं तो जोर तोर से लोग भक्ति भाव करते हैं। तो आज देखा जाए तो 11 अक्टूबर तीन द मंथ हो गया है 11th अक्टूबर

प्रदान करते रहे। फिर सतर्कते मैं थी उसी की वाद से जो बीमार लाचार या आपकी तंदुरुस्ती के लिए हम सब मिलकर बिनती दुआ करते हैं कि आप जल्द से जल्द तंदुरुस्त हो जाए, चंगा हो जाए, बेहतर हो जाए। नहीं तो फिर खेत है जिंदगी के मजे रोजाना लेते रहना, फाउन हिंदुस्तानी को भी सुनते रहना, और थोड़ा बहुत तो हो सके तो हम लोगों के बारे में जरूर बातें शाते करते रहना। फन हार्त बेहतर खाओ, कामयाब हुए तो हमारे फूल टीम की तरफ से तहे दिल से बधाइयां ही बधाइयां। और अगर आप हो सकता है ना कि आप कल परसों या आज कामयाब नहीं हुए हो तो चिंता के कोई बात नहीं है। दिन पे दिन अपने आप पर विश्वास, भरोसा, यकीन, सेल्फ ट्रस्ट थोड़ा और जोर जोर से बढ़ाते रहना और साथ ही साथ कोशिश भी जारी रखना तो हो सकता है ना कि कामयाबी भी दौड़ दौड़ के जल्द से जल्द आकर आपके कदमों को भी चूम सकते हैं। देखो मेहनत तो है दौलत का यारी, यारो रहता है वो तो ओवरऑल खलेरत है। नेवर गिव अप ब्रदर नासिसा। सो सो लोबी लोबी एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड नतुले बदंत फॉर इट लाइस्टरन। इसमें प्रवेश हुए तो सुस्वागतम, फैन फकंसी, ब्लाइव लाइस्टरन आर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो या खातर सीकर लोग फिंदे हैं दैट मीन वे वो। और हो सकता है कि आप देश को छोड़ के कुछ और ज्यादा गर्मी के खोज में जा रहे हैं तो आपको भी हमारे फूल टीम की तरफ से एक शुभ यात्रा। फैन फकंसी खनीतर फम, तमाम लोग सुनते हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो को इंटरनेट के लहरों द्वारा, ओपन टैबलेट स्मार्टफोन ऑफ लैपटॉप, तो आप भी सुनिए हम लोगों को। सो बेंटी एंड ब्लाइव टू फॉन ऑलिस ऑफ द होस्ट ऑफ न्यू फेवरेट रेडियो स्टेशन एंड दैट नीमेकान दैट इज द वन एंड ओनली हमारे जन अक्षर का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो 24 आवर्स एट योर सर्विस मी गुरु। तो साथियों प्रोग्राम का शुरुआत तो मैं सदियों से करते आ रहा हूँ वही शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के साथ। एड फिल्म ललकार ने कंपोज बाय द ब्रदर्स कल्याण जी आनंद जी, और हमेशा की तरह आप सभी को सुनाने को जा रहे हैं सुरों का बादशाह द किंग ऑफ मेलोडी पद्माश्री मोहम्मद रफी साहब जी की। आज गालो मुस्कुरा लो महफिले सजा लो, क्या जाने कल कोई साथी छूट जाएगा, जीवन के डोर तो बड़ी कमजोर है यार, ये कब टूट जाएगा, ये कब समाप्त हो जाएगा, ये तो सिर्फ ऊपर वाले को मालूम है। इसलिए हम लोग तो आप सभी से सदियों से यहाँ से कहते रहते हैं और सदा भी कहते रहेंगे कि हम इंसान हैं, कांधे से कांधे मिलाकर भिड़ाकर लगाकर आगे को बढ़ना है। एनाटिलिक मैथ हिल फे लिफ्ट, खुद को आगे को बढ़ाना है, देश को भी आगे को बढ़ाना है, कौम को भी आगे को बढ़ाना है यारो। तो ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान के बाद आप सुनेंगे साप्ताहिक सरनामी संगीत का प्रोग्राम। पहला अध्याय में कुछ बैठक गाना, दूसरा अध्याय में कुछ सरनामी इंडियन पॉप म्यूजिक, और तीसरा अध्याय में कुछ नए नए सुपरहिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री। तो कुल मिलाकर हमारा और आपका साथ तकरीबन 8 बजे रात्रि तक चलेगा। तो जहां पर भी जिस हाल में हो फाउन हिंदुस्तानी रेडियो आप सभी को एक शुभ शाम शुभ रात्रि पेश करते हैं और साथ ही साथ एक शुभ नवरात्रि नतिलक सभी भक्त प्राणियों के लिए। तो कुछ जरूर सुनाऊंगा दुर्गा माँ के बारे में, सभी माताओं के बारे में। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। हैप्पी हैप्पी संडे, हैप्पी हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू एंड नतिलक एक बार फिर शुभ नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू।

सजालो हमेशा की तरह प्रोग्राम का शुरुआत रफी साहब जी के मधुर आवाज के साथ। साथियों, आज का इस हसीन शाम का मैं शुरुआत करने वाला हूं, जो आप सभी के नाम है खास करके। और आप सभी तो जानते हैं, आज से नवरात्रि भी शुरू हो गया है, नवरात्रम शुरू हो गया है। तो सभी भक्त प्राणियों के लिए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्टर लीडर श्रीमान कुमार गिरव और श्रीमान शिव चीतन जी की तरफ से, साथ ही साथ ऑल ओम रूपर्स ऑल मीड वर्कर्स की तरफ से आप सभी नवरात्रि मनाने वालों के लिए एक शुभ नवरात्रि। और आप सभी के लिए हम लोग विनती करते हैं कि आप सभी के नेक मनोकामनाएं, नेक इरादे सभी पूर्ण होती जाए। और आज की शाम में लाते हैं हमारे हॉलैंड देश का जबरदस्त गायक, जिसे हम लोग प्यार से द किंग ऑफ बैठक गाना के नाम से भी जानते हैं, बुलाते हैं। एंड नतीजुक इस है एतवार, कल में एक महफिल में था, तो ये महान कलाकार संदीप जी के मौसी के दो दो बेटे के जन्मदिन था, दैर तखियार एंड सेशन दैर तखियार एंड हिन्स एंड ओक द टॉपर्स एट द बैठक गाना सीन। मैं बात कर रहा हूँ ग्रेट सिंगर रमन अंगनू, जिनका 30वां सालगिरह था, और उनका बड़ा भाई नरेश इस ओक सेशन दैर तखियार को और तालमाल हेल टैलेंटेड द यंग म्यूजिकांत एट द बैठक सीन, खास करके जो मिडोस्ट ब्रदर ब्रूचन तिलक विराज मास्टर ऑफ द ढोलक, देवेंद्र सिंह सिवनाथ के छोड़ के सभी जबरदस्त गायक आजकल के जो बैठक सीन में इन द टॉप 3 वहाँ उपस्थित थे, कुछ बातें शाते हुए, कुछ गान बजान हुए। तो ये महान संगीतकार के आवाज द ग्रेट संदीप बदलू जी के ब्यूटीफुल आवाज में ये अति सुंदर माता जी के भजन आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम, खास करके नवरात्रि के उपलक्ष्य में जय माता जी की।

0: Hey, Jabberjust, the guy, the king of Beit Ghana from Holland, Nojawan, our Maha Kalakar, the great, great, great Sandeep Batluji, Ostaduka, Ostad, ke beautiful awaz mein ye sundar bayan aap shrotaon sun rahe the aur ye bhi fahun Hindustani radio ke madhyam se aur aap sabhi ko ek baar phir एक शुभ नवरात्रि फुल टीम की तरफ से। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं। अमदद प्रोग्राम आल गमाकत वस एन दिट स्टोंड आल ऑफ मेन लेशे एक बार फिर वही महान जबरदस्त गायक द किंग ऑफ बैठक गाना को लाते हैं और वो सुनाते हैं आप सभी को इन फन से न्यूज़ अलर न्यूज़ नंबर हर जैया।
1: बड़ी शर्मीली है, बड़ी है।

शाबाश शाबाश, द किंग ऑफ बैठ गाना फ्रॉम हॉलैंड उस्तादों का उस्ताद माएस्ट्रो संदीप बदलू जी का बिल्कुल नया सॉन्ग आप सुन रहे थे। पूरे 20 मिनट गुजर चुका है, 5:07 साथियों, रविवार का शाम का प्रोग्राम 11 अक्टूबर 2020 का यह हसीन शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे जो आप श्रोताओं के सेवा में लाइव प्रस्तुत हो रहा है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से। अगला बयान एक और जबरदस्त नौजवान कलाकार को आप सुनेंगे जिनका कल जन्मदिन था, और वो जन्मदिन के बारे में जो मैं आप सभी से भी कह रहा था वही दयारख योप को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को ये शिक्षा और सबक से भरा हुआ बयान। ओक नहीं योंग उस्ताद है मास्टर ऑफ द बाजा ऑफ द हारमोनियम एंड ओक वतन स्टेम। सुनिए, फूलों से तुम हंसना सीखो।

De jarige Job Akerabs, wie ken je, je het is onder bijan koos naja en natuurlijk Holland of Suriname ketamam zijn git karo ketrefse badhanya hi badhanya jio tu sao sao saal ustad ook ustad Raman Agnu ji ke zarije het is onder bijan aap sun rahe the. अगला बयान एक और जबरदस्त गायक हमारे हॉलैंडीज का फ्रॉम द बैठक पावर एंड सोन फन माएस्ट्रो राजू सिंह गुलाम लाते हैं आप सभी को अमित सिंह गुलाम जी को और वो सुनाते हैं अति सुंदर बयान ओइट सॉन्ग दो रॉय रामाधीन न्यू डोरहम सबेरे सबेरे

उस्ताद अमित सिंह गुलाम जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप सुन रहे थे। पूरे 5:30 का वक्त हो चुका है साथ।

तो वक्त हो गया है कुछ ज्ञान के बातें हो जाए ना हमारे ज्ञानियों के लिए, और जो कुछ ज्ञान बिटोरना चाहते हैं उनके लिए भी ये अति सुंदर सुंदर से ज्ञान से भरी हुई बातें। तो साथियों, पुराने जमाने और इस जमाने के कुछ विद्वानों, कुछ पढ़े लिखे लोगों और कुछ मशहूर मशहूर लोगों ने जिंदगी के बारे में अति सुंदर सुंदर बातें सीता के रूप में लिख कर छोड़ गए हैं। कुछ जीवित है, कुछ भगवान को प्यारे हो गए हैं, और ये बातें मैं आप श्रोताओं के साथ बांटना चाहता हूँ। यशो मिल लेकर कि इन बातों से हमेशा की तरह कुछ ना कुछ तो हम लोग जरूर सीखते ही रहेंगे। दूसरा गौर फरमाए। अर्ज किया है महाज्ञानी श्री आइंस्टाइन जी ने, और वो कहा है कि स्काकन इज एट स्नेल्स द स्पेल फ्रॉम द वर्ल्ड ऑन दैट मैन मेट एल्क सिकोंड डाइसेंडन गदाख्तन मुट ऑर्डनन। तालमुत जी ने कहा है साथियों कि यू फ्रिंट हेफ्ट एन फ्रिंट एंड द फ्रिंट फॉन यू फ्रिंट हेफ्ट वेयर एन फ्रिंट वेट ज्वेगन। एली हिल्फर्सम ने कही है, ये मुझ मेर लेरन फर्त्रोवन अप ये एक एरफारिंगन एन वारनेमिंगन एन इंट्यूइट्सी एन नीट डेंकन दत ये अलस आउट द बुक मुझ हाले। Hermans beroemde cabaretier ne kaha hai, alleen staande dame zoekt zittend beroep. Eentje van Winston Churchill die ne kaha hai, voetbal is een heren sport gespeeld door beesten, terwijl rugby een beestensport is gespeeld door heren. Grote voetballer van Nederland, Nick Haai, Simon Johan Cruijff Gine. De tijd dat ik zelf geld meenam, is al heel lang geleden. Ik neem altijd de naam en het gezicht mee. Nog eentje van Winston Churchill. Wanneer twee mensen altijd dezelfde mening hebben, is één van hen overbodig. Thomas Fuller ne kaha hai saathiyo ki wij beseffen de waarde van het water eerst wanneer de bron is opgedroogd. Een hele goeie. Wanneer de kalf verdronken is, denkt men ook de put, hè? Hammer, eentje van Hammer. Wie een weldaad niet met dankbaarheid vergeldt, vertroebelt zelf de bron die zijn dorst heeft gelest. En de laatste van vanmiddag, kaha hij nog eentje van maestro Johan Cruijff. Ik neem altijd zelf de beslissingen. Dus als ze bij Ajax tegen me zeggen, je bent te oud, dan zeg ik, dat beslis jij niet, dat beslis ik. तो भी आप कुछ ज्ञान के बातें सुन रहे थे, कुछ ज्ञानियों के द्वारे ये शामिल लेकर इन बातों को मैं आप श्रोताओं तक पहुंचाया कि इन बातों से हमेशा कितना कुछ ना कुछ तो हम लोग सीखते ही रहेंगे। प्रोग्राम आगे को बढ़ाता हूं, 4 मिनट गुजर चुका है, 5:30 बजकर और आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं। पहला अध्याय में हमेशा की तरह कुछ बैठ गाना, कुछ चटनीस, और दूसरा अध्याय तो भी बाकी है। अगला बयान एक ट्रबल और डबल चटनी ड्रिप बनाए हैं दो छेदियों ने मिलके, रोहित महाबली और रोहित छेदी, नाने दो रोहित होना चाहिए ना, दो रोहित अल्स फोर नाम, रोहित महाबली, रोहित छेदी और संगीतकार सेलेक्टा बीट्स के साथ ये अति सुंदर बयान आप
सुनिए स्पेशल आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम।

Ja, wat hey, shabas, shabas, de twee Rohits, ne milkar ye thi sundar chutney ko tayar kiya hai, Rohit Mahabali aur Rohit Chedi ne milkar. काम किया है साम में प्रोड्यूसर सेलेक्टा बीट्स जो आप अभी सुन रहे थे 41 minuten over 5 हो गया है साथियों रविवार का शाम का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं और अब चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर जोर तोर से सरनामी संगीत आप सुन रहे हैं अगला बयान फॉर गेजेलिगेड Eentje geproduceerd, produced by AI Technology, AI Technology, die zeer ook kunstmatige intelligentie, genaamd naam ze bijzante, hè. Alles is gemaakt door één iemand door middel van een computer, maar klinkt als een huis. Sajanoa ghar avere, chutney Surinam style.

0: शाबाश जबरदस्त गाने वाली हमारे सूरीनाम देश के अगले यार 70 80 90 tot 2000 in Holland ook heel veel opgetreden. Over हमारे बैठक गाने सीन का उस्तादीन और जबरदस्त गाने वाली श्रीमती मनराजी लक्ष्मण जी के ब्यूटीफुल आवाज में जी सुंदर बयान आप सुन रहे थे। तो आज का इस हसीन शाम का प्रोग्राम पहला अध्याय में का आखिरी बयान आप सुनेंगे और लाते हैं प्रोग्राम में नौजवान कलाकार सूरीनाम देश से आया और हॉलैंड देश में आकर कितने को टोपी पहरा दिया। नौजवान कलाकार डगड़े सुजल उमराव जी का बिल्कुल नया सॉन्ग धोबिया के सपना।
1: मर जाइए धोबिया मर जाइए।

पावन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 11 अक्टूबर 2026 का हसीन रात्रि का प्रोग्राम सोमदाग आफंत प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। 4 मिनट गुजर चुका है, 6:07 साथियों, हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं, आप सभी को

बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंड देश भर में नहीं मिलेगा यार, आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेलफामा डॉक्टर फ्रेडरिक टेनिस कंटोर उर ऑफ द फॉलोइंग टेलीफोन नंबर्स कंटोर 073-362-2047 स्टूडियो का तार का नंबर है 073-362-2077। जो भी रेडियो का काम होना देंक अनफाउन हिंदुस्तानी रेडियो इवेंट फन हार्ट वेलकम। इसी तरह हम लोगों के बारे में चर्चा करते रहना यार और रिक्लाम बनाते रहना है ऑल ऑफ यू इसके लिए, और हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तह दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो गुजारिश भी तीन निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द हम लोगों का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। सभी जानकारी आप तार करें van maandag tot vrijdag tijdens kantooruren op kantoor 073-562-2047. Dan wordt u automatisch doorverbonden naar onze teamleider van Fagon Industrie Radio, the one and only maestro Johnny number one. तो आप भी हम लोग का मेंबर बने और को भी बनाए। सवाल सीरियल अलमाल वेट एल्के लास्ट डोंडरदाग van de maand vanaf 6 uur 's avonds live karaoke op de radio bij Fagon Hindustani Radio. Tojaru Sundirena. Volg onze social media's en ook van onze omroepers. Dames en heren, goed hiedekenge waar wij binnenkort voor u live gaan optreden. En dan bent u ook natuurlijk van harte welkom. अभी आकर इस छोटा सा मोटा सा फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का परिवार जो बनते जा रहे हैं उसमें आप भी आकर शामिल हो जाए, शामिल हो जाए, शामिल हो जाए। सभी जानकारी 073-362-2047 पर आप तार करें। वरा के मुताबिक एक ही दम लेकर चलते हैं प्रोग्राम की तरफ आप सभी को। जिसे आप सभी जानते हैं आज से नवरात्रि भी शुरू हो गया है, तो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का डायरेक्ट सिलेर श्रीमान कुमार घिरौ और श्रीमान शिव चीतन साथ ही साथ सभी ओमरूपर्स मेड वर्कर्स फन फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से तमाम दुनिया भर के नवरात्रि मनाने वालों को एक शुभ नवरात्रि। और माँ अम्बे से हम लोग यही विनती दुआ करते हैं कि आप सभी के नेक इरादे नेक मनोकामनाएं सभी पूर्ण होते जाए। जय माता जी की। और इसी उपलक्ष्य में आप ये अति सुंदर माता दुर्गा जी का भजन सुनिए। सुनाने वाला है आप सभी का मनचाहा गायक हॉलैंडिस का द लायन ऑफ बैठक गाना देवेंद्र सिंह शिवनाथ उस्तादों का उस्ताद।

फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे आप चुन है साथियों, रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। तो प्रोग्राम में मैं ला रहा हूँ मेरा ही गाया हुआ ये अति सुंदर भजन, जो खास करके मैस्त्रो ज्वाला लक्ष्मण जी ने तैयार किया है। आने वाले दिनों में ये निकलने वाला है स्टूडियो एयर के साल ऑफ। और श्रोताओं को मैं कहना चाहता हूँ देश भजन है बेखोप खतरा खान महमूदर मुफ्राओ रुकमीन भानमती भगवान दीन चीन कुराय, उन्हीं की याद में 6 भजन में बनाया हूँ और आने वाले दिनों में ये निकलने वाला हूँ। एंड इट वॉज द लास्ट। तो आप सभी को ये अति सुंदर भजन, और मैं आप सभी को ये भी कहना चाहता हूँ एट लास्ट कुप्लेट हैब ik zelf geschreven ter nagedachtenis van mijn lieve moeder। तो ज़रूर सुनिए, और आपको अच्छा लगे तो YouTube पर आप ज़रूर इनको डील भी कीजिए। मिलके सुनते हैं सुरेन भगवान दीन के आवाज़ में, यानी कि मेरे ही आवाज़ में।

तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो, क्या बात है। ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज एंड अरेंज बाय मैस्ट्रो ज्वाला, और आवाज तो आप सुन रहे थे मेरा ही आवाज, सुरेंद्र भगवान जी का आवाज। साथ ही साथ आप सभी को नौ रात्रि के शुभकामनाएं आप सभी तक पहुंचे। अगला बयान की तरफ बढ़ते एक जबरदस्त गायक हमारे सूरीनाम देश का आप सुनेंगे, और वो क्या बात है, जबरदस्त गाते हैं, और देखा जाए इन फ्रॉम द बेस्ट बेंचेस हेडन, इस जमाने का जबरदस्त म्यूजिक फॉर्मेशन द स्टार्स 2020 का नंबर वन फॉर्मेशन म्यूजिक का हमारे सूरीनाम देश का, तो उन्हीं में ये दोनों जबरदस्त गाते हैं, और दो आवाजें में आप सुनिए ये सुंदर बयान। रम मैं तुझे प्यार मिक्स बाय फारिस बरसाती अंत रायन अब्दुल अजीज, म्यूजिक बाय द स्टार्स फ्रॉम सूरीनाम।

Shabash from the music formatie The Stars uit Suriname. Aap Soer het he jo do jabarjast gane wale from the music formatie Stars. The great Faris Bersati al Ryan Abdul Aziz ka ye bilkul naya chutney mix. 6 मिनट रह गया है 6:30 बजने में साथियों, और आप चुन है फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर रविवार का रात्रि का प्रोग्राम 11 अक्टूबर 2020 का यह हसीन रात्रि का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। तापमान दिन अक्षर का तकरीबन 13-14 ग्राद के दरमियान है, और शाम को तो ढेर सारे धूप निकला था, नु इज इट एक्ट बीच ग्रेसिग आन इट वर्ड। तो जहां पर भी है, जहां पर है आप ये प्रोग्राम को सुन रहे हैं, सभी को फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का ढेर सारा प्यार दुलार प्रेम और मोहब्बत आप सभी तक पहुंचे, और हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को भी एक शुभ नवरात्रि पेश है। अगला बयान एक और जबरदस्त मैशअप है, ऑल्सो फ्रॉम द म्यूजिक फरमासी द स्टार्स, और इस बार लाते हैं जबरदस्त गायक मैस्ट्रो रोहित छेदी जी को, और वो सुनाते हैं सुनो सुनो।

क्या बात, ये भी होता है ना यारो लाइफ ब्रॉडकास्टिंग में। तो आप अभी ये चीज सुंदर बयान को सुन रहे हैं, रहे थे और रोहित छेदी फ्रॉम द म्यूजिक फरमाशी द स्टार्स फ्रॉम सूरीनाम लाइव रिकॉर्डिंग। पूरे 6:30 का वक्त हो चुका है साथियों। अगला बयान जबरदस्त गायक धीरज लाला राम को लाते हैं प्रोग्राम में और वो सुनाते हैं आप सभी को, जरा बच के रहना, हिलाओ मोरे बलमा।

क्या बात है, हिलाओ मोरे बलमा। एक बार फिर फ्रॉम द म्यूजिक फार्मेसी स्टार्स, गाने वाला धीरज लाला राम, ब्यूटीफुल सॉन्ग आप सभी प्रिय प्रिय श्रोताओं के नाम। 4 मिनट गुजर चुका है, 6:30 बजकर तो वक्त हो गया है ना कुछ शेर शायरी हो जाए हमारे शेर के जानने वालों के लिए। और इस बार अनपार इन नीदरलैंड्स खात ऊपर दलीफ दे नतीवलिक। अर्ज किया है साथियों, लिफ्ट इज द मेस्ट हीलिंग क्राफ्ट इन द वर्ल्ड। निच गाट डीपर दान द लिफ्ट। Het heelt niet alleen je lichaam, niet alleen je geest, maar ook je ziel. Wanneer 2 personen voor elkaar gemaakt zijn, is geen tijd te lang, geen afstand te ver en kan niemand ze uit elkaar krijgen. En dat is liefde. Je weet pas dat je leeft, je weet pas dat je leeft als je voelt dat een ander om je geeft.

Dit nummer is opgedragen aan al die Indiase Caribbean jihadis die richting Caribbean kwamen. Ook hoort Suriname natuurlijk ook erbij, hè. Toen zat hij op het raam niet bakkie, hij zat een beetje niet mee op. Toen hij van Hindustani radio per Jotor zei, Suriname, Sangeet, Dusra, Djaai, op zo'n rege, hij Suriname Indian pop music, kuch chutneys, kuch souls, en kuch reggae's, aaj kees hazien programme. अगला बयान एक जबरदस्त फॉर्मेशन हमारे सुरिनाम देश का फ्री स्टाइल का तीन गाने वाले हैं मिलके गाए हैं हम तुम है एक जान और देखा जाए तो ये भी एक जबरदस्त फॉर्मेशन है हमारे सुरिनाम देश का मिलके सुनते हैं ये ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल सनी एंड विकी.

Wonderful song by Sunny and Wiki, a live recording from the music formatie Freestyle. Aur ye ati sundar bayan hai, jo log sun rahe the aur kafi pasand kiya, isliye special ek bar phir aap sabhi ke seva mein main chalaya. 9 मिनट बाकी है साथियों, 7 बजने में अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं. एक सुपर हिट सॉन्ग हैगा, अब देखा जाए कि कॉम्बिनेशन फन रात के सपना मैं रमता जोगी राम सुनाने को जा रहे हैं आप सभी को. मशहूर गाने वाला सूरीनाम देश का मैस्त्रो अमरीश प्रसाद और वनीता वेली के ब्यूटीफुल आवाज में ये चीज सुंदर बयान आप सुनिए. 3-4 म्यूजिशियन मिलकर बजाए हैं, देखा जाए रोशन मुक्ति मिसीर, करण मथुरा और डेफन बीट्स. ब्यूटीफुल सॉन्ग स्पेशल और आज के हमारे दूसरा अध्याय का आखिरी बयान होगा क्योंकि 8 मिनट बाकी है 7 बजने में.

पावन हिंदुस्तानी रेडियो का रविवार का रात्रि का प्रोग्राम आप श्रोताओं की सेवा में लाइव ब्रॉडकास्ट है। घड़ी की तरफ देखता हूं तो पूरे सात का वक्त हो चुका है। साथियों, हमारे फुल टीम की तरफ से आप श्रोताओं को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। तमाम टैक्सी ड्राइवर जो कार्यक्रम को भी सुन रहे हैं इस वक्त, आप सभी को एक बार फिर से स्वागतम कार्यक्रम में। अनतिलक वर्क्स बॉयज एंड गर्ल्स, सोशल लोबी लोबी ऑन ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू एंड अनतिलक बिनंत फॉर हेट लॉयस्टरन। जो भी रेडियो का काम हो, खास फरमाइश से जरूरी खबरें इस तिहारे दिन कम फाउन हिंदुस्तानी रेडियो किफायत सस्ते दाम सिर्फ इस गारंटी और क्वालिटी के साथ आपका जो भी रेडियो का संदेश होना अपमान पर हम लोग बनाकर और जितने बार आप चाहेंगे बंधु उतने ही बार हम लोग ऐलान कर देंगे और ये भी किफायत सस्ते दाम में। मैं तो सदियों से आप श्रोताओं से यही कहते आ रहा हूँ कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से सस्ता और अव्वल पता आप सभी को हॉलैंडेज भर में नहीं मिलेगा यार, हो आप आजमा कर तो देख। सभी जानकारी बेल्फ मांडा टॉट फ्रेडा ऑफ द फोल्ड टेलीफोन नंबर स्टेरेंस कंटोर उर कंटोर 973-62-2047 और स्टूडियो कतार का नंबर है 973-62-2077। जो भी रेडियो का काम हो ना यारो डेंक अनफाउन हिंदुस्तानी रेडियो इवन फन हार्ट वेलकम। और इसी तरह हम लोगों के बारे में रिक्लाम बनाते रहना, थोड़ा बहुत चर्चा करते रहना और हो सके तो ढंढोड़ा भी पीत देना हम लोगों के बारे में, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोग भी है ना, मिलजुल के हम लोग यहाँ आप सभी के सेवा में आते जाते रहते हैं और अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स बना बना कर हम लोग लाते हैं, आप सभी कुछ सुना देते हैं ना, तो आप लोग सुनते हैं तो हम लोग आते हैं, तो ज़रूर हम लोग के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करते रहना, रिक्लाम बनाते रहना और इसके लिए हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद। हिंदुस्तानी रेडियो तो बिनती निवेदन किया जा रहा है कि आप भी जल्द से जल्द फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का मेंबर बने और को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। एंड सो ऑस्ट्रेलिया अलमल वेट हम लोगों का कराओके टीम जोर तोड़ से चल रहा है एंड एल्क लास्ट डोंडरडाग फन द मंथ फन 6 यूर सावंस लाइव कराओके ऑफ रेडियो फाउन वन स्टिक ऑफ 7-8 ओमरूपर्स लाइव एंड ओमरूपस्टर्स ओक लाइव फॉर यूली komen zingen, dus blijf luisteren, hè? Het is een hype op de radio geworden en zoals velen zijn wij de primeur, dus social lobby lobby and blessings to all of you voor het luisteren.

अभी हम लोग का मेंबर बने और रो को भी बनाए, आपको तो ढेर सारे फायदा ही फायदा है। 3 मिनट गुजर चुका है 7:07 साथियों, तो हर के मुताबिक कुछ नए नए सुपर हिट सॉन्ग्स फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री आप सुनने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को तो मालूम है नवरात्रि भी आज से शुरू हो गया है, तो इसी उपलक्ष्य में फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के डायरेक्टर लीड श्रीमान कुमार गिरव और श्रीमान शिव चेतन नाट्यलक अल अमरूपर्स मेड वर्कर्स की तरफ से फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का तमाम सुनने वालों को एक शुभ रात्रि पेश कर रहे हैं। मित ही फील भक्ति भाव एंड नाट्यलक पूजा पाठ और जो हम लोग के हो पाए हम लोग यहाँ रेडियो पर से जरूर रोजाना कुछ ना कुछ आप सभी को हम लोग सुनाते रहेंगे। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, और अगर आप एक आधा घंटा या एक घंटा का नवरात्रि के प्रोग्राम स्पॉन्सर करना चाहते हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से, तो जरूर आप तार करें

भक्ति भाव का ये बहुत ही जाना पहचाना हुआ कलाकार है। हंसराज रघुवंशी जी के मधुर आवाज में ये जय माता काली का भजन आप सुनिए। शुभकामनाएं प्यार मोहब्बत के साथ।

जय माँ काली। ये अति सुंदर भजन आप श्रोताओं सुन रहे थे कसोंग दोर अन हेल खुय भक्ति वेदांता, जो अपना संगीत सभी मंदिरों में और गुरु द्वारों में जहाँ जहाँ पर भक्ति भावना हो रहे हैं भारत भर में सुनाते रहते हैं। म्यूजिक भाई भरत कमल और अल्फा जिथा रवि चोपड़ा जी का, महान गायक इस जमाने का फीमेल फोकलिस्ट मंजू नौतियाल जी साथ दे रहे थे हंसराज रघुवंशी जी का कोरस के साथ। अगला बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों, कुछ अलग तरीके के सॉन्ग्स है। Natuurlijk een hele mooie reggae voor jullie allemaal uit de Bollywood film industry. Trending Bollywood reggae hits 2026. Created by AI technology.

अति सुंदर बयान। काफी दिनों बाद एक नया सॉन्ग निकाला है ये महान फनकार, जबरदस्त गायक हमारे बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का, इस जमाने का मास्टरो अरिजीत सिंह, खसखरीफ दौर देव पांडे एंड म्यूजिक अरेंज अंत कंपोज्ड बाय इस जमाने का जबरदस्त कलाकार दिखा जाए तो मैं

Ja, als computers een beetje raar gaan doen, dan weet je hoe laat het kan zijn. Hè? Ja. Maar ik heb hem hoor. Het is een Derbianco Sajaya hai Rahul Nairji ne aur likha hai Deo Pandey gaya hai Arijit Singh. What a bayan. 7 minutes baki hai saathiyo 7:30 bajne mein rabivar ka ratri ka program aap sun rahe hai kuch naye naye super hit songs from the Bollywood film industry. एक जबरदस्त सॉन्ग रख चुका हूँ, नगमा का बोल है हूर और गाने वाला है इस जमाने का जबरदस्त गायक फहीम अब्दुल्ला जी, जो काफी नाम कमा चुका है, जो गाना वो गाया फिल्म सायारा का टाइटल सॉन्ग फॉर ऑल, वही आवाज आप सुनिए. देखा जाए कंपोज बाय फहीम अब्दुल्ला अरसलान निजामी, लिखा है कैसर निजामी ये अति सुंदर बयान को, और गाने वाले है द मैन हिमसेल्फ फहीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी और कैसर निजामी, तीन आवाजों में अति सुंदर बयान को बयान आया गया है.

ब्यूटीफुल सॉन्ग, वंडरफुल सॉन्ग और नगमा का बोल है हूर। गाने वाला फहीम अब्दुल्ला, अरसलान निजामी और कैजर निजामी फ्रॉम द कोक स्टूडियो भारत इंडिया से आप सुन रहे थे। लेखक है कैजर निजाम और शायद मेहदी रजवी और म्यूजिक अरेंज प्रोड्यूस किया गया है और शीशान नबी और फहीम अब्दुल्ला जी। एक मिनट गुजर चुका है 7:30 बजकर साथियों, तो कुछ आखिरी शेर्स हो जाए, आखिरी खदिख्त हो जाए आज के मेरे हिस्से के कार्यक्रम में, खास करके मोहब्बत लिफ्ट के बारे में जाते हैं ओक इन नीदरलैंड्स। अर्ज किया है यारों की एक विल यो हियर बाय मी, एक विल नीड्स अंडर्स। यह गीव मी दैट गेवोल, यह गीव मी दैट गेवोल व्हाट एन अंडर मी नोइट हैव्ड गेगेवन। Sterrenbeelden, sterrenbeelden die je hart zullen breken, van minst tot minst. Sterrenbeelden die je hart zullen breken, van minst tot meest, waarschijnlijk zijn ze gerangschikt. Vandaag geef ik je een hart, dat je altijd gezond mag blijven. Een hart voor onze vriendschap. Een hart dat het je altijd goed gaat. Dank je wel dat je er altijd bent. Er is altijd iemand die echt van je houdt. En dat zweet.

Liefde is blij zijn met elkaar, houden van elkaar en trouw zijn voor elkaar. Dat is liefde, Marie Pribrié Sloutan. Toen heb je Jaap Kutje aangrijgeerd, ach, kriegedichten zo'n regen. Regen heer, hem maar een aardje hisseke programma. Karigramme. तीन मिनट गुजर चुका है साढ़े सात बजकर और अब जरा आप दिल को थाम लीजिए. अब आप सभी के खिदमत में मैं वो आवाज ला रहा हूं जो आजकल दुनिया भर को हिला चुका है अपने गजलों से अपने स्टाइल से और अपने कंपोजिंग के जरिए. महान कलाकार गायक कंपोजर पापों जी को लाते हैं और वो लेकर चलते हैं आप सभी को एक लाइव कॉन्सर्ट जो वो दिया था कलकत्ता शहर में शाम महफिल बाय द ग्रेट सिंगर पापों. और वो सुनाते हैं आप सभी को गजल रॉक ऑप्शन एक स्टाइल. महान गायक जगजीत सिंह जी का गाया हुआ गजल कौन कहता है, मिल के सुनते हैं. Om van te genieten. Remember, it's a live recording.

ऐसे महान गायक द मैन विद द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस फ्रॉम द बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री इज इस ज़माने का द ग्रेट मैस्ट्रो पापोन. रिमेंबर साथियों, इट वॉज अ लाइव रिकॉर्डिंग गजल शो कोलकाता में जो दिया था. भी धीरे धीरे करीब आने लगा है, लेकिन उससे पहले ये अति सुंदर बयान है मशहूर गाने वाली पंजाब का नेहा बशीन सुनाती है आप सभी को विवाह वाने विवाह के बारे में.

करा रे मेरा व्याह नेहा बशीन जी के ब्यूटीफुल आवाज में अति सुंदर बयान आप श्रोताओं ने सुने और देखा जाए म्यूजिक प्रोड्यूस बाय समीर उदीन और अति सुंदर बयान को लिखा है नितेश जुमानी एंड नेहा बशीन जी ने मिलकर।

बयान की तरफ बढ़ते हैं साथियों। अति सुंदर बयान, काफी दिनों बाद नेहा कक्कड़ जी ने कुछ निकाला है और देखा जाए म्यूजिक डायरेक्टर शरीफ बेनिस और रजत नागपाल जी का बनाया हुआ है ब्यूटीफुल सॉन्ग साथ नेहा जी का दे रहे हैं मेन फोकल सिंगर साथ लम जैरत। मिलके सुनते हैं ये अति सुंदर बहना शहनाज जी, क्या बात है। और गाने का बोल है बेजाफ़।

ब्यूटीफुल सॉन्ग और गाने का बोल है बेजाफ, अति सुंदर बयान है गाने वाली द ग्रेट नेहा कक्कड़ जी के ब्यूटीफुल आवाज में। साथ दे रहा था साथ लेम चरत, म्यूजिक कंपोज एंड अरेंज बाय रजत नागपाल और शरीफ बेनेस। क्या बात है, अलग स्टाइल का सॉन्ग आप सुन रहे थे। 8 मिनट रह गया है साथियों, 8

तो धीरे धीरे वक्त भी करीब आ गया है आप सभी से विदा लेने को। ये यश उम्मीद लेकर घर को जा रहा हूं साथियों कि जिस तौर तरीके से मैं कोशिश किया आप सभी को सेवा करने में, ये यश उम्मीद है कि मेरा पेश किया हुआ प्रोग्राम आप सभी को पसंद आया हुआ होगा। अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 8 बजे मैं आप सभी से फिर मिलने वाला हूं गीत और गजल ओल्ड इज गोल्ड संगीतकारों का दास्तान नामक कार्यक्रम लेकर, और उसके बाद कुछ नखबे जिन मूवीज में महान अभिनेता द ग्रेट एक्टर धर्मेंद्र जी ने काम किया है। तो मुझे आप सभी इजाजत दे, हमारे बात आप सभी को सेवा करने वाला है बड़का भैया श्रीमान चंद्रसेन गंगा जी। तो जरूर प्रोग्राम को सुनते रहना, मजे लेते रहना। आने वाले दिनों में फिर मिलते हैं आप सभी से आवाज के जरिए, और हमारे फूल टीम की तरफ से आप सभी को एक शुभ नवरात्रि। जाते जाते हमेशा की तरह कुछ ना कुछ कोशिश करता हूँ गुनगुनाने को, और इस बार संगीतकारों का शहंशाह और बादशाह हसीनों का पुजारी किशोरदा के याद में कुछ ट्राई करता हूँ।

I love you all from the bottom of my heart. और अगर जिंदगी कुदरत ने साथ दिया तो आने वाले बुधवार रात्रि 8 बजे में हाजिर हो जाऊंगा आप सभी के खिदमत में. Susolo bilomi and blessings to all of you and natuurlijk bedankt voor het luisteren. Bye bye.

जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में सादर सा प्रेम, नमस्ते, आदाब, राम राम, सत श्री अकाल। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है, www.faunfm.nl पर, वीफी रेडियो और इंटरनेट रेडियो पर। जो बीमारे, लाचार, तंदुरुस्ती, दुआ के प्रार्थनाएं, जिनके घर में कोई शादी हुआ, कोई भी उत्सव हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयां पेश है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम यहां से शुरू हो रहा है, इस उम्मीद के साथ आप हमारा साथ अवश्य देंगे। आप जहां भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, आप सबको हृदय से स्वागत किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। मैं हूं आपका सेवक गंगा, और कुंभड़ी तक हम आपका साथ रहेंगे। उम्मीद है आप हमारा साथ जरूर देंगे। हाँ, अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से मैथ मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान, नेगन तीन फिर से इवन तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर माइती मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुना है निकति एन सैफ का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

फिल्म अली बाबा एंड द 40 थीव्स यानी अली बाबा और 40 चोर। इसकी कहानी बहुत अच्छी है, गीत सुनिए।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा, तवारिक गवाह है, यानी खुशकिद ने इतिहास गवाह है, अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। और ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेक दिन ससन शस्त्र का ये फिल्म हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से। जी हाँ।

लता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिलके ये शानदार डुएट आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं और आपके धन्यवाद। एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य, और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाएं, निकती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए यह शानदार गीत ओफर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर। महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओबी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाएं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.55fm.internet पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत, इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार द्वैत हमने पेश की हो परफॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

कीर्ति मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म मेहंदी लगी तेरे हाथ और ये नहीं नहीं मेहंदी लगी मेरे हाथ, हाँ मेहंदी लगी मेरे हाथ 1962 का ये फिल्म निकली तू का ये फिल्म है और हमने ये गीत पेश की आपके लिए सभी श्रोताओं के लिए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये भी एक लंबा चौड़ा गीत है। जी हाँ चलो सुनते हवा हवाई।

हवा हवाई फिल्म का नाम है मिस्टर इंडिया और गाने वाली थी कविता कृष्णमूर्ति जी। तो ये तो आजकल की कैबरी है ना, जो आजकल चल रहा है, उससे पहले की कैबरी थी ये। चलिए हम उससे पहले की यानी सिजदार शस्त्र का गीत आपको सुनाते हैं और देख रहे हैं कि गंगा जमुना में किस तरह से वैजयंती माला ये गीत एक्ट की है और अपनी नृत्य पेश की है।

वाह क्या बात है, गंगा जमुना में से हम आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, और हमने पेश की ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, और ये उस ज़माने के गीत था यानी सस्त खयार का, गंगा जमुना में से निकाले हैं नौशाद अली के साज पर। चलिए उसी फिल्म में से एक बार हम आपको सुनाते हैं, जी नहीं, ये मदर इंडिया का है, ये मदर इंडिया का है उन दिनों की।

वो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे धीरे हाँ करे शमशाद बेगम, और साथ ही नौशाद अली के साज पर ये गीत चला। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम निगेटिव 75 तक का ये गीत और फिल्म मदर इंडिया में से निकाले। आपके जानकारी के लिए बता दूं, मदर इंडिया पहली फिल्म थी थिएटर द पारल में निगेटिव 75 तक में जब चला बॉलीवुड का। उससे पहले नॉन हिंदी फिल्म चला था ये मुझे नहीं मालूम, कोई अमेरिकन फिल्म या फ्रांस फिल्म था। बहरहाल हिंदी फिल्म पहला फिल्म था मदर इंडिया जो द पारल में चलाया गया सूरीनाम देश में नेगेटिव 75 तक में।

दगा वही वही ये शानदार गीत चला ऊपर पावन हिंदुस्तानी रेडियो हमने पेश की इस तरह से। लोग पूछ रहे थे गंगा जी आपने कितनी सीफ ने फाइफ तक की बात कर रहे थे आतर दपाल का पहला फिल्म, तो वो लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि हमने हिंदी फिल्म सबसे पहले कभी कहाँ देखा है, तो हमने पहला फिल्म देखा है रेक रियासी साल में देखे हैं और वो था फिल्म आवारा, और उसके बाद टेटर में देखे हैं तो स्वर्धन उफुम ब्रक्सर क्या नाम है लुक्सोर में देखे हैं फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 टेटर में देखे हैं, उससे पहले रेक रियासी साल में देखे थे। चलिए अगला गीत हम आपको सुना रहे हैं और वो इस तरह से है।

मेरी भीगी भीगी सी एवरग्रीन किशोर कुमार जी आपको सुनाए और फरफान हिंदुस्तानी रेडियो हो फाउन एफएम इंटरनल पर आप चुन हैं, जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं। क्या ख्याल अगर मैं आपको ये गीत सुनाऊं, इस तरह से है आ रहा है। धर्मात्मा 1975 ने हिंद फैफ सही हिंद।

फिल्म धर्मात्मा में से निकाले हैं मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और कंचन जी निकती फैफ से दिखा ये गीत हम आपको सुना है शाम के इस तरह से कार्यक्रम में। तो चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है लता जी है रफ़ी साहब की आवाज़ में साथ साथ दे रहे हैं।

फिल्म वारिस में से आरती बर्मन के साथ पर रफ़ी साहब और लता जी, इन दोनों की आवाज़ में हमने पेश की ये शानदार गीत। चलिए कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं और लीजिए एक बार फिर, जी हाँ,

झूम के गायों आज मेरे दिल। जी हाँ, फिल्म देखते हैं, कौन सा फिल्म था, चंडिका तो नहीं है, बहरहाल इस वक्त मेरे दिमाग में नहीं, बहरहाल गीत हम आपको सुनाएं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, जी हाँ इसका फिल्म तो मालूम है ज़रूर, फिल्म रोटी। फिल्म रोटी में से निकाल रहे हैं नीग तीन फिरन सैफन तक, 1974 का ये गीत इस तरह से है, एवरग्रीन किशोर कुमार।

फन हम हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9735 तक 20 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

आप चुने फोन हिंदुस्तानी रेडियो पर आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका हृदय से स्वागत करते हुए हम चला रहे हैं ये प्यारा गीत इस तरह से है।

भूले अफसाने फिर से याद आए, रफ़ी साहब की आवाज़ में पेश हुआ ये गीत हमने पेश किया आपके लिए। उम्मीद है गीत आपको अवश्य अच्छा लगा होगा, क्योंकि जहाँ तक मेरा ख्याल है बहुत दिन हुए ये गीत हमने चलाए थे, आज फिर याद हो गया, हमने सोचा फिर आपको सुना दूँ। चलिए अगला गीत हम पेश कर रहे हैं और वो ये है बजरिया के बीच। बस सुनिए लता जी की हाहाकार आवाज़।

गले लग जाऊं बजरिया के बीच, हमने कहा लता मंगेशकर जी नहीं लेकिन आशा जी, आशा जी की आवाज़ में सुनाया गया फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में है। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं और वो ये है, ये गीत दरअसल में यहाँ पर लिखा है कि इस एक्ट्रेस की आंखों को देखकर बहुत से बॉलीवुड वाले फिदा हो जाते थे, पता नहीं हाँ है या ना है, लेकिन सोचिए ये रायश्री है उस ज़माने की एक्ट्रेस 60s का। बाद में वो कहाँ चली गई, हाँ पता चला अमेरिका चली गई, लेकिन उसके बाद फिर कुछ नहीं पता चला इनके बारे में। रायश्री का ये फिल्म है और एक्टर इस वक्त मुझे मालूम नहीं है, शायद याद हो जाएगा बाद में मैं, लेकिन चलो वो गीत तो आपको सुनाते हैं जिनकी आंखों को देखकर बॉलीवुड वाले

ने मोहब्बत से मेरा दिल भर दिया, रफ़ी साहेब और लता जी आपको सुनाएं, ये गीत हमने निकाले हैं आप ही के लिए शुभकामना के साथ। लीजिए आप ही के लिए हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

बन के पंछी गाए प्यार का तराना। लता जी और साथी मिल के आपको सुनाए ये शानदार गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं आपके लिए। ये एक बहुत पुरानी गीत है। जी हाँ, बहुत पुरानी गीत है, लेकिन इसे जितने बार भी सुना जाए लगता है हाल ही में रिकॉर्ड हुई है। तो आप सोच रहे होंगे कौन सा गीत है कि यही लगेगा कि ये गीत हाल ही में रिकॉर्ड हुआ है।

दिन हो या रात हम रहे तेरे साथ, रफी साहब और सुमन कल्याणपुर फिल्म मिस बॉम्बे में से निकालकर हंसराज बहल के साज पर हमने पेश की आप ही के लिए। आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, आपका हृदय से स्वागत है। तो अगर जहाँ आप चुनी हैं तो चलिए हम आपको मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस का एक गीत सुनाते हैं।

मैं थी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए दो होंठ हिले किसी ने मुझे ऐप की कि गंगा ये गीत तो आप अभी चलाए चुके हैं। हाँ बात थोड़ी सी सही है, दरअसल में वो भी लता जी की थी। जी हाँ वो लता जी नहीं, वो भी मुकेश का था और धुन एक ही है लेकिन शब्द अलग है। वो था ऐ प्यार मुझे रो लेने दो और ये था दो होंठ हिले। मुकेश जी की आवाज़ में दोनों गीत गाए गए हैं मुकेश द्वारा, लेकिन शब्द अलग है धुन वही है। तो यही बात है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन विभिन्न हेल खुल इस तरह हमके नाम आखिर तो नाम लेवे के बाकी तुरंत कान बहुत तेज है और दिमाग बहुत तेज है। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत पेश करने वाले हैं और वो ये है, चलो सुनते हैं लता जी और सिर्फ लता जी है।

जी हाँ, लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाएं ये शानदार गीत। और जहाँ तक मेरा ख्याल है यह फिल्म नौशेरवान आदिल का ये गीत हमने पेश किया है। इस तरह से आ रहा है ये शानदार गीत है।

0: तेरी आवाज के पीछे चले आओ, रफ़ी साहब की आवाज़ में ये गीत हमने पेश किए। जी हाँ, तो चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है, देखते हैं लता जी की आवाज़ में एक बार फिर।
1: शर्मा
0: नहीं रफ़ी,

फिल्म शहनाई निगतिन फिरे सस्तक का ये फिल्म है और हमने पेश की इस फिल्म में से ये गीत निकाल कर। तो हाँ, www.fm.nl पर आप चुने, जो लोग चुन की मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। आप हैं तो मैं हूँ, और जब आप नहीं होंगे तो फाउन हिंदुस्तानी भी नहीं रहेगा रेडियो। तो आप ही से हम सब हैं, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, वो ये है इस तरह से।

सनसना सनसना सनसनन लता जी और साथ ही मोहम्मद रफी के साथ ये गीत हम पेश किए ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, ये है उदित नारायण जी।

उन्नी नारायण जी की आवाज में हम ये गीत आपको सुनाए, मेरे लिए तूने तुम्हें रब ने बनाया है, और शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो ये है इस तरह से।

फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फनहंट के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फनहंट हिंदुस्तानी रेडियो।

हाँ अगला गीत मैं चलाने वाला हूँ, तो ये है इस तरह से मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ रोटी कपड़ा मकान नेगन तीन फिर से इवन तक का ये गीत आपकी जानी पहचानी गीत है।

मैं ना भूलूंगा, मैं ना भूलूंगी लता जी और मैथ मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, रोटी कपड़ा मकान में से आपको सुनाए हमने ओवर फाउन हिंदुस्तानी और रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और आपका हृदय से स्वागत करते हुए, चलिए हम आपको ये गीत सुना रहे हैं। क्या ख्याल है, इस तरह से आ रहा है।

शंकर जय किशन के साज पर माइती मुकेश करोड़ों के दिल पर राज करने वाला आपको सुनाए निकति एन सैफ का एक गीत 1971 का और फिल्म नादान में से चला। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, क्या ख्याल है, ये लंबा चौड़ा गीत सुनिए रफ़ी साहब की आवाज़ में।

फिल्म अली बाबा एंड द 40 थीव्स यानी अली बाबा और 40 चोर। इसकी कहानी बहुत अच्छी है, गीत सुनिए।

0: देख लीजिए, अब कोई नहीं कह सकता कि सर धड़ से अलग था।
1: शाबाश, ये लीजिए आपका इनाम।
0: शुक्रिया शुक्रिया।
1: मुस्तफा बाबा, जरा आंखों पर पट्टी बंधवा लीजिए ना।
0: बांधिए बांधिए।
1: कल रात को मैं फिर आपके घर आऊंगी।
0: किसी और की गर्दन काटने का इरादा है क्या?
1: नहीं नहीं, सिर्फ आपसे मिलने।
0: जरूर आइए जरूर आइए।
1: चलिए
0: चलिए चलिए।

हम तेरे चिराग है, जलाए जा बुझाए जा। तवारीख गवाह है, यानी खुशकी दिन इतिहास गवाह है। अली बाबा एंड द 43 में ये गीत हमने निकाले हैं। आओ, ये असली कहानी है, सही कहानी है, क्योंकि कितने किताबों में आया है, कितने पुस्तकों में इसका जिक्र हुआ है। उषा खन्ना के साज पर नेक दिन सस्त सस्त का ये फिल्म हम आपको सुनाएं। चलिए, अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है इस तरह से। जी हाँ।

लता जी और हेमंत कुमार जी, ये दोनों मिल के ये शानदार द्वैत आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप भी सुन रहे हैं। और आपके धन्यवाद, एक दो लोग जो ऐप किए कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता है। बहरहाल वे लोग जान गए हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, रफ़ी साहब का ये गीत सुनिए। ये गीत है फिल्म बेरहम का, जी हाँ, बहुत प्यारा गीत है। नेगेटिव तख्त का ये फिल्म है और बहुत प्यारा गीत है, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साथ पर रफ़ी साहब की आवाज़ में। ये गीत में बहुत सा ज्ञान भरा हुआ, इसे ध्यान से सुनिए, अगर समय मिले तो सुनिए अवश्य। और अगर आज बिजी हो गए तो काम करते रहिए, लेकिन ये गीत सुनिए, इनकी शब्दों पर ध्यान दीजिए।

पेशानी पे जो लिखा है वो पेश आएगा, मालिक ने जो लिख दिया है वो बदल ना पाएगा। पता है सही है या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये भी गाया गया है कि भागवत भगवान की आरती पापियों के पाप से है तारती, लेकिन पता नहीं। बहरहाल यह गीत हम आपको सुनाए, निकती तख्त का ये गीत है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। हमने कहा इन गीत इसलिए कहा कि वर्मा मालिक के लिखे हुए गीत हम आपको सुनाएं कि कितने प्यारे शब्द है इस गीत में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो है माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। कहानी किस्मत की टाइटल सॉन्ग।

कहानी किस्मत की मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाइए ये शानदार गीत ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं महेंद्र कपूर जी की आवाज़ में हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत। इस तरह से आ रहा है

महेंद्र कपूर जी और हेमंत कुमार जी की आवाज़ में ओबी नैयर के साथ पर फिल्म संबंध में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाएं ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए एक ही गीत और हम आपको सुनाते हैं, उसके बाद फिर हम आगे कार्यक्रम लेकर बढ़ेंगे। ये गीत इस तरह से है।

हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, ये शानदार गीत चला लता जी और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में हमने पेश की www.55fm.internet पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। या शाम के कार्यक्रम में तो लीजिए हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत इस तरह से आ रहा है।

आई लव यू, ये शानदार डुएट हमने पेश की ऊपर फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं ओम मैं चला रहा हूँ, इस तरह से हमने पेश की ये गीत। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये है, इस तरह से आ रहा है।

देखो बिना सावन बरस रही बदली, और ये शानदार गीत हमने पेश की रफ़ी साहब की आवाज़ में निकती निघ्न फैफ तक का ये गीत हंसराज बहल के साज पर।

मेरा सनम सबसे प्यारा है, ये शानदार गीत चला फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में हमने पेश की, और ये था आशा जी और कुमार सानू, फिल्म है दिल का क्या कसूर, दिल का क्या कसूर में से निकाले हैं ये शानदार गीत हमने पेश किए। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, तो क्या ख्याल है अगर ये आपको सुना दूँ?

जाने कैसा है मेरा दीवाना, या क्या बात है। आशा जी और एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए फिल्म है आंसू बन गए फूल, उसी में से निकाल कर हमने पेश की ओफर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो www.faunfm.nl पर। आप चुने जो लोग चुन के मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है। आप चाहे जहाँ भी होंगे, दुनिया के जिस कोने में भी होंगे, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चून हैं। सुबह हो या शाम होगा, रात्रि होगी, पता नहीं कौन सा मौसम है, कौन सा दिन है, आपके जगह आपके जहाँ पर हैं, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए शुभकामना के साथ हम पेश कर रहे हैं ये गीत।

शम्मा बुझने को चली, ये गीत हम निकाले हैं, देखते हैं। फिल्म मेरे ध्यान से निकल गया, शम्मा बुझने को चला। फिल्म गंगा की लहरें, हाँ गंगा की लहरें में से निकाले हैं रफ़ी साहब का ये गीत, हम आपको सुनाए हैं फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

संग मरमर से तराशा हुआ ये शोक बदन इतना दिलकश है कि अपनाने को जी चाहता है। सुर्ख होंठों में थिरकती है वो रंगीन शराब जिसको पी पी के बहक जाने को जी चाहता है, लेकिन इस हुस्न पे मर जाने को जी चाहता है। हमसे बेहतर है ये पाजेब जो इस पाँव में है, रख ले कल के लिए ये दूसरी पाजेब दिल, कल इसी बज्म में फिर आने को जी चाहता है।

इस रेशमी पाजेब की झनकार की सदके लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में ये शानदार गीत पेश किया गया उर्फ़ान हिंदुस्तानी रेडियो, जबकि आप सुन रहे हैं और मैं चला रहा हूँ। आप सबको भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं। क्या ख्याल है, शाम के वक्त है और आप भी हैं और मैं भी हूँ।

0: लता जी और मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म छाया में से निकाले हैं। निगत एन एस एस का ये फिल्म है और सलील चौधरी के साथ पर हमने पेश की फान हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है, जी हाँ, इस तरह से आ रहा है।
1: आई है रे, हमने

खाई रे हमने कसम हंस परदेसी। लता जी आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो एक गीत और हमने प्लेयर में रखे हैं लेकिन समय नहीं मिला कि ये गीत कौन सा है। हाँ ये तो पता है कि फिल्म बाबू का है, निकिता फैफन तख्त का है और आशा जी और किशोर कुमार जी ने गाए हैं और देखते हैं राजेश रोशन के साथ, ये सब पता है लेकिन गाना चलो मैं भी सुनता हूँ, उम्मीद है आप भी सुनोगे।

लता जी आपको सुनाए अगर तुझको मोहब्बत है फिल्म आपकी परछाइयाँ में से है नेक दिन फिर से शस्तका जी यानी कि फिर शस्तका ये गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर हम चलाने वाले हैं, एक फिल्म है, फिल्म शायद आपने देखे होंगे, बहुत पुरानी फिल्म है, ये गीत है गाया गया है गीता रॉय जी के जरिए और मन्ना दे जी के जरिए। ये फिल्म बहुत पुरानी फिल्म है, स्वार्थवेद फिल्म है, शायद आपने देखे होंगे, नाम है जग्गा डाकू, जिसमें जयराज ने खेले हैं, एक्ट्रेस का नाम मैं भूल गया लेकिन सिर्फ जयराज याद है। तो जब मैं बहुत छोटा था ये फिल्म देखे इसलिए सिर्फ जयराज याद है, एक्ट्रेस नाम नहीं है, क्योंकि जयराज तलवारबाजी में बहुत तेज था उन दिनों। तो लीजिए वही गीत मैं आपको सुना रहा हूँ, इस तरह से आ रहा है।

हाँ जी, फिल्म जग्गा डाकू में से निकाल कर हम आपको सुनाएं गीता जी और मन्ना दे जी की आवाज़ में, जबकि आप सुन रहे हैं। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर। ये गीत बहुत बार चला लेकिन ये गीत भी मुझे बहुत पसंद है। तो अगर जब मैं कहूँगा फिल्म अनपढ़ तो आपको पता चल गया होगा, लता जी भी आपको पता चल गया होगा। अगर पता चल ही गया है तो चलो सुनते हैं।

आपकी नजरों ने समझा मदन मोहन। जी हाँ, मदन मोहन के साथ पर फिल्म अनपढ़ में से निकाल कर नेकेत निंस 1962 का ये गीत लता जी की आवाज़ में हम आपको सुनाए। चलिए अगला गीत हम रखने वाले हैं और ये है भी एक बार लता जी, फिल्म गुलामी तो आपने देखे होंगे। जी हाँ, फिल्म गुलामी में से निकाल कर। ये चलता क्यों नहीं भाई? अच्छा, अगर वो नहीं चलता तो ये तो ज़रूर चलेगा।

वाह क्या दिव्य था रफ़ी साहब और आशा जी की आवाज़ में फिल्म कश्मीर के कलीमे से निकाल कर हमने पेश की ओपेन नैयर के साज पर। चलिए अगला गीत, तो क्या ख्याल है? जी हाँ, रफ़ी साहब ये कह रहा है कि अगर वो आता है तो सिर्फ वक्त बिताने के लिए, अमायकों की रतिंग। तो चलो सुनते हैं क्या ख्याल है रफ़ी साहब के और आशा जी की आवाज़ में फिल्म नीला आकाश में से निकाल कर 1965 का ये गीत, निगेटिव फैंसस का ये गीत हम आपको सुना रहे हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा गीत है, सुन लीजिएगा।

अच्छा तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, हमने कहा ना मैं कुं कीरा तेंग। बहरहाल लेकिन ये भैया ये कह रहा है कि मैं प्यार करूं या ना करूं, ये भी अभी सोच रहा है।

सोचेंगे कि तुम्हें प्यार करूं कि नहीं। कुमार सानू ने आपको सुनाई है फिल्म दीवाना में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। थोड़ी बहुत मुझे याद ये है ऋषि कपूर और दिव्या भारती की फिल्म। दिव्या भारती एक बहुत जवां उम्र में इनका स्वर्गवास हो गया, हेल यंग उफरलीद। मुझे पता नहीं कितना देखना पड़ेगा लेकिन सेज हेल यंग उफरलीद दिव्या भारती। चलो हम आपको अब ये गीत सुनाते हैं इस तरह से। जी नहीं, गीत सुनाने से पहले, जी हाँ गीत सुनाने से पहले फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि आपको ये गीत सुना ही दूँ। चलिए ये गीत आपको सुना ही दूँ और वो है इस तरह से।

फिल्म पूर्णिमा में से निकाले हैं। मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं 1966 का ये फिल्म, निकिता सेन शस्त्र का ये फिल्म और हमने पेश की। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो है ये भी लता जी, ओनली लता जी, लता जी की आवाज़ में ये धमाकादार गीत हम आपको सुनाते हैं। आपने सुने हमने कहा धमाकादार गीत, जी हाँ वास्तव में बहुत धमाकादार गीत है। ये भी 1966 का है, फिल्म आए दिन बहार के, फिल्म आए दिन बहार के में से लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के सांझ पर। आओ ये लता की आवाज़ में इसे ध्यान से सुनिए, गीत आपने बहुत बार सुने होंगे लेकिन आज स्पेशल सुन लीजिए, क्योंकि ये बात नहीं कि गंगा चला रहा है, जी नहीं, लेकिन ये गीत की धुन जो है और जिस तरह से लता जी ने ये गीत गाए हैं, वाह बहुत कमाल के।

फिल्म आए दिन बहार के ये गीत हम आपको सुनाए हैं ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर और लता जी की आवाज़ में टाइटल सॉन्ग आए दिन बहार के निकटीन सेशन सेस्तक का ये फिल्म। चलिए अगला गीत क्या ख्याल है, माइटी मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस। जी हाँ, लता जी के साथ 1961 का फिल्म छाया में से निकाल कर।

चोरी चोरी, और ये गीत हम आपको सुनाए हैं सलील चौधरी के साज पर, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर फिल्म साजन में से 1969 का ये गीत, निकनेसेस्थ का ये गीत। हमने एक बार कहा था, पता नहीं कब, लेकिन एक बार फिर कह देते हैं, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल एक ही म्यूजिक डायरेक्टर है, जोड़ी है म्यूजिक डायरेक्टर जो सबसे ज़्यादा फिल्मों में साज दी है, 454 फिल्मों में इन्होंने साज दिए, सबसे ज़्यादा म्यूजिक डायरेक्टर जो फिल्मों में साज दिए। चलिए हम आपको सुनाते हैं फिल्म साजन में से ये गीत। लता जी।

रेशम की डोरी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर 1969 निगेति निघ्न शस्त्र का ये गीत हम आपको सुनाए हैं। लता जी और रफ़ी साहब की आवाज़ में रेशम की डोरी, इसका सारे भी बनता है। जी हाँ, रेशमी शायद सारी। चलिए